0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड

0: भी ईएमएस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट पीजी की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आणि न्यूज ऑन ए आय आर ॲपवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं कोल्हापूर केंद्र। श्रोते हो, 6:05 झाली आहेत। आता मनाचा गाभारा उजळून टाकणारा आमचा भक्ती संगीताचा कार्यक्रम अमृतधारा प्रसारित करत आहोत।

0: मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री

0: 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट। संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन

0: ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
2: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
3: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है।

0: युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से आईआईटी मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है, 1200 बेकाबू एआई एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन एआई और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर एआई की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है, पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा एआई, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं, चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, एआई को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आए ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला टी20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: हे आहे आकाशवाणीचं कोल्हापूर केंद्र, FM बँड 102.7 मेगाहर्ट्सवर। श्रोतेहो, 8:15 वाजलेत, ऐकूया प्रायोजित कार्यक्रम रुचिरा मसाले खवय्येगिरी।
3: ऐकूया खवय्यांसाठीचा चटकदार कार्यक्रम रुचिरा मसाले खवय्येगिरी।
4: रुचिरा मसाले खवय्येगिरी या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत रुचिरा मसाले बाजारगेट कोल्हापूर।

सभी सुनने वाले दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। संगीत के इस सुरीले सफर में आप हैं हमारे हम सफर। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर आपको बता दें क्या है आज की इबारत। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, होली के रंग फीके बेनूर थी दिवाली। एक मोड़ पर वो मुटियार मिली, मुझको तो रांझे की हीर लगी। खोया मैं उसकी वो मेरी बातों में, और समा हुआ रंगीन। जाना था जापान, पहुंच गई चीन। करे पूजा जमाना जिसकी, वो तस्वीर हो तुम, न जाने किसकी किस्मत में हो तुम। इजाजत हो तो हम भी मुकद्दर आजमाएं, मीठे पान दी गिलौरी, रास्ता नाप रही जुगनी से। कह दूं तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना। तुझे पाके जमाने की खुशी, पाई है तेरी उल्फत, ये रंग लाई।

या अंधेरा, कहीं ना छूटे हाथ मेरा, कोई मेरा ना तेरे बिन साथ निभाना मेरा। शोला है या बिजुरिया, उतर जाए रगों में तो नशा है, आदत पड़ जाए तो सजा है, इसलिए आज झूम ले आसमां को चूम ले, ये अनमोल जमाने फिर नहीं आने वाले। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर हमें बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं आपके कुछ संदेश। इश्क के रंग में डूबे दिलों की रंगत रौनक को इजाफा करती, रंगीन बनाती रुमानी गानों से सजी इबारत है ये। रस्मों रिवाज त्योहार सभी में महबूब के दीदार की तमन्ना रहती है, इन्हीं हसरतों उमंगों तरंगों में दिलों की दुनिया सिमटी रहती है, सारी बातों की एक ही बात होती है, मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत। आज सुरीला सफर वाहन के साथ रास्ते सड़कों पर तय होने वाला है, मौसम सुहाना है, सफर भी आनंददायक रहेगा। तस्वीर शब्द पर आधारित हिंदी फिल्मों के कई बेहद लोकप्रिय और सदाबहार गाने हैं, इनमें से सबसे हिट गाना तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है जो इनको बहुत पसंद है, पर आज बात तस्वीर की नहीं होगी। आज की इबारत में तो जैसे नए पुराने यादगार गीतों की पूरी महफिल सजी है, इन गीतों का जादू यही है कि इनके बोल हमारी भावनाओं को हमसे पहले पहचान लेते हैं, जो बात हम किसी से कह नहीं पाते वही बात गीत बड़ी आसानी से हमारे दिल की आवाज बनकर कह देते हैं। शायद इसीलिए गाने सुनते हुए हमें सिर्फ संगीत हम सिर्फ संगीत नहीं सुनते, बल्कि अपना ही कोई बीता हुआ पल, कोई रिश्ता और अपने मन की अनकही कहानी सुनते हैं। गीत खत्म हो जाता है लेकिन उसका एहसास देर तक दिल में गुनगुनाता रहता है, बिल्कुल सच बात है ये। मन में कुछ चीजें समय बीतने के साथ खुद ब खुद स्पष्ट हो जाती हैं। जिंदगी में खुशी आएगी तो दुख भी आएगा, असुरक्षा आएगी तो डर भी आएगा, सो जो है वो आज इसी पल में है, शोला हो या फिर चमकती बिजुरिया, जिंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा झेलना पड़ता ही है, तो इन चमकते गीतों के सहारे हम तय करेंगे आज का सुरीला सफर। जी हाँ बिल्कुल। कुछ मुलाकातें उम्र नहीं पूछती, बस दिल में उतर जाती हैं और फिर बरसों बाद भी यादों की खिड़की खोलो तो वही रंगीन शाम, वही हाथ और वही अधूरा सा सफर सामने बैठा मिलता है। मन के खाली नगर में किसी की तस्वीर उभरने के खूबसूरत रूहानी एहसास को बयां करती है ये, वो तस्वीर एक ठंडी हवा के झोंके की तरह पूरे वजूद को महका देती है और सालों का खालीपन को रूहानी एहसास से भर देती है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, फिल्मों में मुख्य अभिनेता का कार टैक्सी ट्रक ड्राइवर का किरदार निभाना भारतीय सिनेमा में काफी लोकप्रिय रहा है, ऐसी फिल्मों में अक्सर एक्शन इमोशन और सफर का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है, तो ऐसी ही कुछ मशहूर फिल्मों के गीत हमने लिए हैं आज के सुरीला सफर के लिए, जिसमें हीरो मुख्य रूप से किसी गाड़ी को चलाने का काम करते हैं। '71 की क्लासिक बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी कारवां, धोखे से कराई गई शादी से घर से भागी लड़की सुनीता और बंजारों के दल के साथ ट्रक चलाने वाले मोहन, सफर के दौरान दोनों को हुआ एक दूसरे से प्यार और दूसरी तरफ सुनीता की तलाश में उस कारवां के पीछे ओंडे, रोमांचक मोड़ एक्शन और गानों के दरमियान साजिश का पर्दाफाश।

प्रकाश होता है। खलनायक अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और मोहन सुनीता की प्रेम कहानी होती है पूरी। तो बताइए कौन थे मोहन सुनीता और खलनायक, और इस फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताएं हमें। तब तक आइए सुनते हैं इस गीत को, यानी कि आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ कार्यक्रम की, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

साथियों अपने विचार, अपनी बातें, अपने पैगाम और संदेश आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं, तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में आगे बढ़ते जाएंगे। फिल्म का नाम था कारवा। जीतेंद्र, आशा पारेख, अरुणा ईरानी, मदनपुरी और जूनियर महमूद ने इस फिल्म में भूमिका निभाई थी और निर्देशक थे नासिर हुसैन। हमारे साथियों ने लिखा है कि राजेश खन्ना और देव आनंद के बिना कोई सफर सफर नहीं होता जिंदगी का। एक वक्त था जब जिंदगी बेरंग थी, फिर तुम आए और सब कुछ बदल गया। हम एक दूसरे की बातों में ऐसे खोए कि दुनिया को भूल गए। तुम किसी हसीन ख्वाब जैसी हो और तुम्हें अपना बनाने की चाहत इस दिल में है। तुम्हारे साथ से जिंदगी मुकम्मल लगती है, इसलिए अब हर हाल में मेरा साथ निभाना। तुम एक खूबसूरत लत की तरह हो, चलो आज के इस हसीन पल को पूरी शिद्दत से जी लेते हैं क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। मन भी अजीब सा मुसाफिर है, कभी खुद में ही सफर करता है, कभी खामोश रहकर कह देता है सब कुछ, कभी कहकर भी कुछ नहीं कहता। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद और जॉब लगने के बाद मेरे मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे मन के नगर को भरा और सूखी डाली में हरियाली भी आई जब मेरे जीवन में आई मेरी पत्नी यानी के मेरी घरवाली। साथियों, टैक्सी, कार या बसों से आपने कोई सुहाना सफर किया तो होगा, तो कहां कहां की सैर की उन खूबसूरत यादों को, बातों को हमारे साथ बांटिए और लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। टैक्सी चोर इस एक्शन थ्रिलर मूवी में मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्य भूमिका निभाई थी, पर हम बात करेंगे खुददार। इस सुपरहिट फिल्म में महानायक ने एक ईमानदार टैक्सी चालक का रोल प्ले किया था जो अपने उसूलों के लिए लड़ता है। तो बताइए गोविंदा यानी कि उस महानायक का नाम और इस गीत में कौन सी अभिनेत्री उनके साथ है उसका भी नाम बताएं। और इस गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

फिल्म आशा का गीत याद आ रहा है, जाने हम सड़क के लोगों से, जितेंद्र उसमें ट्रक चलाते हैं। अगला मैसेज है कि सफर जीवन का हो, किसी मंजिल तक जाने का हो, किसी के दिल तक पहुंचने का हो, या सुरीला सफर विविध भारती के साथ हो, हम तो हर सफर को एंजॉय करते हैं क्योंकि असली मजा और सुनहरी यादें सफर की होती हैं। मंजिल या मकाम पर पहुंचने के बाद भी वही हमारे जहन में रहती हैं। सबसे लंबी सड़क मार्ग का सफर मेरा कटक से पुणे का था। काफी रोमांचक था। चिल्का झील, घने जंगलों, पहाड़ों से गुजरते हुए पहली रात, विशाखापट्टनम समुद्र किनारे दूसरी रात, और हैदराबाद में गुजरने के बाद सोलापुर होते पुणे पहुंचे मैं, मेरी पत्नी, बेटा, बेटी के संग। सफर के हमने खूब मजे लिए। आवाज की दुनिया के हमारे दोस्त तो हमारी ही तरह इबारत लिखना सीख गए हैं। गीतों के इस सफर में बढ़ते हैं अब आगे। बेहतरीन लोकेशन और रोमांटिक फिल्म कश्मीर की कली, जिसमें एक अमीर बिजनेसमैन राजीव लाल को एक सीधी साधी फूल बेचने वाली लड़की चंपा से प्यार हो जाता है, और पेशे से ट्रक ड्राइवर मोहन चंपा पर बुरी नजर रखता है और उसके गरीब पिता दीनू को ब्लैकमेल करता है। कहानी कई उतार चढ़ाव, गलत पहचान का नाटक, खलनायकों की चालें, और अंत में सभी गलत फहमियां दूर होकर एक सुखद मिलन होता है। तो किस खूबसूरत लोकेशन पर यह फिल्म बनाई गई थी। वैसे तो उसमें फिल्म के नाम में ही वो बात छुपी है। और राजीव, चंपा, मोहन की भूमिकाओं में कौन से कलाकार थे, और निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे ये जो गाना अभी आप सुनेंगे, इस ट्रक में भेस बदल कर गाना कौन से अभिनेता गा रहे हैं, और गीत में आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं SH बिहारी, संगीतकार हैं OP नैयर, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं पूजा भट्ट, संजय दत्त, दीपक तिजोरी, नीलिमा आजम और सदाशिव अमरापुर का जो महारानी के किरदार में नजर आए थे, अवतार गिल, जावेद खान, पंकज धीर और निर्देशक थे महेश भट्ट। साथियों, आपने कभी ट्रक की सवारी की है या उसमें बैठकर किसी शादी में गए हैं या ट्रक से जुड़ी कोई बात हो तो वो भी हमें बताएं। खेती करने में ट्रक का कितना और कैसा योगदान होता है वो भी बताएं। और अब बात उस ब्लॉकबस्टर मूवी की जिसमें सनी देओल पेशे से एक देसी ट्रक ड्राइवर के रोल में नजर आते हैं और इस फिल्म में ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा भी है। तो उस फिल्म का नाम और सनी देओल की भूमिका का नाम, निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे इस फिल्म में सनी देओल ने एक चीज उखाड़ ली थी, क्या थी वो चीज उसका भी नाम लिख दे। तब तक आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाजें हैं उदित नारायण और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं हमारे पेज पर। सनी देओल की भूमिका वाले किरदार का नाम था तारा सिंह, साथ में थे अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, सुरेश ओबराय और गदर। एक प्रेम कथा में तारा सिंह ने जमीन से सीधे एक लोहे का हैंडपंप उखाड़ लिया था, जिसे हिंदी फिल्मों के इतिहास के सबसे लोकप्रिय सीन्स में गिना जाता है। और इस फिल्म के निर्देशक हैं अनिल शर्मा। राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म को देखकर जब जब फूल खिले वाले शशि कपूर और नंदा याद आ जाते हैं हमें। साथी ने लिखा है कि मजेदार मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा है और मेरी सात गीतों की लिखी हुई इबारत में से छठे नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल हो गया है। और एक साथी ने लिखा है कि सड़कों के सफर में हम कई बार ट्रक्स और सामान ले जाने वाली गाड़ियों के पीछे लिखी हुई लाइनें जो लिखी होती हैं उसे पढ़ते हैं, जैसे कि अनारकली, अरे बढ़कर चली, जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर, नहीं तो गर्दिशों के दौर का मारा है सफर, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं हाईवे की। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा महावीर भाई नाम के एक ट्रक ड्राइवर और किडनैपर की भूमिका में नजर आए थे और नायिका के साथ भारत के अलग अलग रास्तों पर ट्रक के जरिए वो सफर करते हैं। तो बताइए उन इलाकों के लोकेशन के नाम और फिल्म के निर्देशक का भी नाम बताएं, साथ ही उन जगहों के बारे में आप कोई खास जानकारी रखते हो तो वो भी हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। और आलिया भट्ट की पहली फिल्म का नाम क्या था वो भी लिख दें, और इस गीत में आवाजें किसकी हैं वो भी बताएं। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं ए आर रहमान।

साथियों, आपके जवाब हम पढ़ देते हैं। निर्देशक हैं इम्तियाज अली और उनकी ये जो फिल्म हाईवे है, भारत के अलग अलग इलाकों में फिल्माई गई थी, जिनके नाम है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। आलिया भट्ट की पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और संघर्ष में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था और इस गीत में आवाजें थी सुल्ताना और ज्योति नूरानी की। साथियों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर का, इस फिल्म का गीत, और इस गीत का एक जवाब हमें जल्दी से लिखकर भेज दीजिए कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है।

फिल्म का नाम था टैक्सी ड्राइवर, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत को लिखा था साहिर ने, संगीत था सचिन देव बर्मन का, और इस फिल्म में नजर आए थे देव आनंद, कल्पना कार्तिक, जॉनी वॉकर, और ये जो गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री का नाम था शीला रमानी।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। और आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

त्रिवेणी तट पर मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह सभी को नमस्कार। दोस्तों, जीवन में खुशियां आसपास बिखरी होती हैं, हम खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। चलिए आज छोटी छोटी बातों में तलाश करें खुशी का खजाना। सुबह सुबह जब चिड़िया मुंडेर पर बैठकर फुदकती है, जब आकाश में चिड़ियों का समूह सैर पर निकलता है, जब नदी के शीतल पानी को स्पर्श कर माथे से हम लगाते हैं, जब अदरक वाली खुशबूदार चाय की चुस्कियों के साथ सुबह सुबह रेडियो ट्यून करते हैं और रेडियो की सुई विविध भारती पर ठहरा देते हैं, तब होती है असली खुशी। तो चलिए आज रेडियो के साथ खुशी मनाते हैं। खुशियां

दोस्तों, किसी विशेष तिथि पर जब हम जश्न मनाते हैं तब खुशी में डूब जाते हैं। जश्न के इंतजार में जो खुशी मिलती है वो अलौकिक होती है। खुशी हमें मिल जाती है किसी प्रिय व्यक्ति से मिलकर, कोई पसंदीदा कार्यक्रम सुनकर हम खुश हो लेते हैं, किसी की आवाज सुनकर हमारा दिन बन जाता है, कोई अपनी पसंद का सुनहरा गीत सुनकर हम होठों पर मुस्कान सजा लेते हैं, खुशी से तरबतर हो सकते हैं। आइए आज दिन भर नहीं, शाम को रात तक बीने खुशियों की सीपियां। इतनी सी

दोस्तों, अगर हम खुश होना चाहते हैं तो लोगों की छोटी मोटी चालाकियों, धूर्तताओं पर धूल डालकर आगे बढ़ जाएं और देखें कि कौन व्यक्ति अच्छा है, गुणी है। गुणी व्यक्तियों के साथ रहकर भी हम खुशी पा लेते हैं। किसी उत्सव, पर्व, त्योहार पर हम खुश हो लेते हैं। कुछ उत्सव आपको सिर्फ एक तिथि की याद नहीं दिलाते, बल्कि आपको खुशियों की टोकरी सौंप देते हैं। छोटी छोटी खुशियां आपका मन समृद्ध कर देती हैं। हमारे चारों तरफ खुशियां बिखरी पड़ी हैं, जरूरत है उन्हें चुनकर सहेजने की, संवारने की। छोटे से बच्चे की किलकारी आपको खुशी से भर देती है। मासूम बच्चे को हंसाकर हम पाते हैं खुशी। कोई गीत गुनगुनाकर हम पा लेते हैं खुशी। तो चलिए गुनगुनाएं और बांटे सबको ढेर सारी खुशी।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में

0: पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
1: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
1: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी दो दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
3: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
4: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए संवैधानिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व

के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजनियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से।

भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार हैं गौहर कानपुरी, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है जख्मी।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नख्मों का कार्यक्रम सदाबहार नख्मे। आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

साथियों लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन है राहुल देव बर्मन के, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। कस्बा हरदुआगंज अलीगढ़ से मुन्ने मियां अंसारी, अयान अंसारी, नफीस अंसारी, शाहिद अहमद अंसारी और विंस टे

सदर नागपुर से कमल गोल्दा, अंकित गोल्दा, अभिषेक गोल्दा, प्रेम लता गोल्दा और समस्त गोल्दा परिवार। आमला ग्राम अंधारिया बैतूल एमपी से वीरेश झारे, योगेश झारे, त्रिवेश झारे और नवदीप। नेरदे वर्धा छिंदवाड़ा से पूजा देवी, बलराम पटेल, जानवी, रामा और देव। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलविंदर कौर धीमान, रोनित, नीशु और भूपेंद्र। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीट बेबी प्रियांशी। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज है मोहम्मद रफी की, गीत को लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है उषा खन्ना का और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है और इसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। मालेगांव जिला वाशिम महाराष्ट्र से अरविंद साखरकर, सुनीता, रोहित, निखिल और दीपमाला साखरकर। रणपिसे नगर अकोला महाराष्ट्र से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनिषा वेनो संगेफर, रीना रोहित, मनु गयालकर और राज भारती। कोपर गांव से पेंटर दारूवाला, मतिन दारूवाला, मसूदा दारूवाला, दिया और दानिश खान। बाला चौक यवतमाल से पत्र लिखा है मीना ताई, गायत्री, भूमि, नितिन, तनिश, मुकेश, दीपिका, लवीसा, शौर्य, शुभम, कल्याणी, कुकू और सुनीता श्रीवास ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज है आशा भोसले की, गीत को लिखा है शहरयार ने, संगीत है खयाम का, फिल्म का नाम है उमराव जान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर खत लिखे हैं आपने। शैलू बाजार जिला वाशिम से नारायण गवार गुरु, सरला गवार गुरु, सचिन खाडेकर, दक्ष, आयुष पुरवा, निर्मोही और आधी राज ने, रिधोरा से बाबूलाल बोराखडे, गोकुला बोराखडे और मंगेश बोराखडे, दुर्ग रायगढ़ से गेंदालाल श्रीवास, कुशल और गेंदू भाई, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बीरक, जय तेग बीरक और मीका बीरक, रामना हड़दी से मोहम्मद आरिफ, फातिमा अरफा और एमएच शरीफ, जलगांव सोमनाथ से आपने खत लिखा है डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, कार्तिक और अश्विनी भुतेकर, संभाजी नगर महाराष्ट्र से वैष्णवी जगदाड़े, हर्षुल साउंगी, संभाजीनगर भाव सिंह पूरा से वैभव और गौरव लोखंडे, और बदनापुर से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी और रुद्र कोलकर ने ये पत्र लिखे हैं। साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि, फिल्म का नाम है आंखें।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइश पढ़ने में हमें आसानी हो। आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत

कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आकांक्षा विश्वकर्मा और चंचल वर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।

0: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा।
1: कौन? तुम
2: क्या पढ़ रही हो? जरा देखूं तो।
1: कुछ नहीं, ऐसे ही।
2: देखूं तो सही। अच्छा, विष वृक्ष पढ़ रही हो? और मैं तो समझा कि कोई गुप्त चीज होगी।
1: मेरे पास गुप्त क्या हो सकता है?
2: जैसे बिहारी की कोई चिट्ठी।
1: क्या क्या कहा तुमने?
2: अरे मैं तो परिहास कर रहा था।
1: छोड़ो मेरा हाथ। परिहास किसका कर रहे थे? यदि उनकी मित्रता के योग्य होते तो तुम्हारा परिहास मैं सह लेती। तुम्हारा मन छोटा है, मित्रता करने की शक्ति नहीं तुम्हें।
2: मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं।
3: महिंदा, ओह, बड़े समय में आ गया, किंतु ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। केवल एक बात कहने आया हूं। मैं काशी गया था, जानता नहीं था कि भाभी वहां है। बिना जाने उनके सामने जाकर अपराधी हुआ, पर उनसे क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मेरे मन को ज्ञान अज्ञान में यदि किसी पाप ने स्पर्श किया हो तो उसके लिए उन्हें किसी तरह का दुख ना सहना पड़े। बस
2: मैंने तो ना तुमसे दोष स्वीकार करने को कहा है ना स्वीकार करने को, तब तुम क्षमा मांगकर साधु बनने क्यों आए हो?
3: मैं
1: बिहारी लाला जी, तुम कुछ मत कहो। इस आदमी ने जो कहा है उससे इसी के मुंह पर कलंक लगा रहेगा।
3: अच्छा, मैं जाता हूं।
1: लाला जी, मुझसे तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहना? यदि तिरस्कार करने की बात हो तो तिरस्कार करो। लाला जी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लाला जी
3: हट जाओ मेरे सामने से।
2: अरे, तुम्हारे बाएं हाथ की कोने से खून बह रहा है। ला फिर, मैं अभी पट्टी बांध देता हूं।
1: कुछ मत करो, गिरने दो।
2: कैसी बात कर रही हो? पट्टी बांध कर अभी एक दवा देता हूं, दर्द जाता रहेगा और घाव शीघ्र अच्छा हो जाएगा।
1: नहीं, इस दर्द को बना रहने तो, मुझे अच्छा नहीं करा रहा है।
2: ओह, मैंने अधीर होकर लोगों के सामने तुम्हें अपदस्त किया, इसके लिए मुझे मुझे क्षमा करो।
1: क्षमा किस लिए? अच्छा किया। मैं क्या किसी से डरती हूँ? जो लोग थक्का देकर चोट पहुंचाकर छोड़ जाते हैं वे ही क्या मेरे सर्वस्व हैं? और जो पांव पकड़ कर रखना चाहते हैं वे कोई नहीं।
2: तो तुम मेरे प्रेम को कभी नहीं ठुकराओगी?
1: नहीं, मैं उसे माथे पर लगाकर रखूंगी।
2: चुन्नी, काशी से लौटने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है।
4: और तुम कैसे रहे?
2: अच्छा ही था। सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूं।
4: आज इतनी जल्दी?
2: हाँ, कुछ आवश्यक कार्य है। अच्छा, चलता हूं। महेंद्र, तू ये क्या कर रहा है? कभी तेरा मन आशा की ओर भागता है, कभी विनोद की ओर। आशा जब जब तेरे पास आती है तो उसकी ओर उपेक्षा का भाव रखता है और विनोदनी के पीछे पीछे भागता है। तुझे क्या मालूम कि उस सरल हृदय पर क्या बीतती होगी? लेकिन आज ना तो भोजन के समय और ना उसके बाद ही आशा आई। मैं तो सोच रहा था कि अपने प्यार दुलार से उसकी सारी वेदना को दूर कर दूंगा। आशा को अब भी मैं कितना प्यार करता हूं, वो बहुत कम स्त्रियों के भाग्य में होता है। और विनोदनी, आशा और विनोदनी दोनों के लिए मेरे हृदय में स्थान है और दोनों में से किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। ओह, ये मौसम, ये चांदी रात, लेकिन विनोदनी मुझसे दूर नहीं।

0: मैं भी उससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा, चलिए उसी कमरे में।
1: विनोद, विनोद बिस्तर बिछा है, विनोद ने कहा है?
2: कौन?
1: मैं हूं, मैं।
3: अरे महेन, इतनी रात को तू यहां कैसे? महेन, विनोदिनी, महेन बहू को छोड़ इतनी रात कर यहां क्या करने आया था?
2: मुझे क्या मालूम, शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी।
4: आज भी समय से पहले कॉलेज चले गए, ना हमसे कुछ बोले ना कुछ कहा। चलो उनके कपड़े निकाल दो। अरे चिट्ठी देखो तो किसकी है? ये तो विनोदनी यानी किरकिरी की चिट्ठी, इनके नाम। हे भगवान, जरा पढ़ो तो। कल रात तुमने जो कुछ किया
2: उससे भी क्या तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई? आज फिर नौकरानी के हाथ गुप्त चिट्ठी क्यों भेजी? चिची, वो अपने मन में क्या सोचती होगी? मुझे क्या तुम जगत में किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रखोगे? तुम मुझसे चाहते क्या हो? प्रेम? तुम्हारी ये भिक्षा वृत्ति क्यों है? जन्म से तुम केवल प्रेम पाते आ रहे हो, तब भी तुम्हारे लोभ का अंत नहीं है? जगत में मुझे प्रेम करने और पाने का कोई स्थान नहीं, इसी से मैं खेल खेल कर प्रेम का खेत मिटा लिया करती हूं। जब तुम्हारे पास अवसर था तब उस मिथ्या खेल में तुमने भी साथ दिया, किंतु खेल की छुट्टी क्या कभी समाप्त नहीं होती? अब घर में तुम्हारी पुकार हुई है, अब धूल झाड़कर घर जाओ। मेरे तो घर नहीं है। हाँ, मन ही मन अकेली बैठकर खेलती रहूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी।
4: हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों? क्या क्या ये हमारा संपूर्ण सर्वनाश है? मौसी, मौसी।

0: आज माँ ने मुझे रोज की तरह अभी तक आवाज नहीं दी, बात क्या है? चलो मैं स्वयं ही उनके पास भंडारे में जाती हूँ।
1: माँ,
0: माँ, माँ, जान पड़ता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बात भी है ऐसी है। उस रात देखो ना, एकदम पागल की तरह खड़े हो गए, मुझे तो फिर नींद ही नहीं लगी। शायद शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। फैसले के लिए मुझे धर पकड़ना चाहा, रात भर सब्र कहा। आपके लड़के में माँ और चाहे हजार गुण हो, पर धैर्य तो लेश मात्र भी नहीं है, इसीलिए अक्सर मेरे से उनका झगड़ा हुआ करता है।
2: बहू, तुम झूठ बक रही हो, मुझे आज कोई बात अच्छी नहीं लग रही।
0: मुझे भी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ। तुम्हारे मन को चोट लगेगी, इसीलिए झूठी बातों से तुम्हारे लड़के के गुण दोष ठगने की चेष्टा कर रही थी, किंतु जो हो गया उसे ठगा नहीं जा सकता।
2: अपने बेटे के दोष गुण मुझे मालूम है, परंतु परंतु तुम ऐसी मायावी हो, ये मैं नहीं जानती थी।
0: कोई किसी को नहीं जानता माँ, अपने मन को ही क्या सब जानते हैं। तुमने क्या कभी अपनी बहू से द्वेष करके इस मायावनी से अपने लड़के का मन बहलाने की इच्छा नहीं की?
2: अभागिन, बेटे के बारे में तू माँ पर अपवाद रखती है, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती?
0: माँ, हम सब मायावनी की जाति की हैं। मेरे अंदर क्या माया थी ये मैं ठीक नहीं जानती, तुम जान गई। तुम में जो माया है उसे तुम नहीं जानती, मैं जान गई। माया थी अवश्य, अन्यथा ऐसी घटना ही न होती। मैंने कुछ जाने कुछ अनजाने जाल बिछाया,

0: तुमने भी कुछ जानकर कुछ अनजाने बिछाया था। हमारी जाति का धर्म ही ऐसा है।
1: अभागिन, तू तू
2: विनोद,
0: जाओ मेरे कमरे से, तुम चले जाओ।
2: क्यों, क्या किया है मैंने?
0: क्या किया है? डरपोक कायर, तुम्हें क्या करने की शक्ति है? ना तुम प्रेम करना चाहते हो, ना कर्तव्य निभाना, फिर मुझे क्यों लोगों के सामने नष्ट किया चाहते हो?
2: मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ये कह रही हो?
0: हाँ, मैं यही कह रही हूँ। लुका चोरी, ढकना उघाड़ना, कभी इधर कभी उधर, तुम्हारी चोरों जैसी प्रवृत्ति देखकर मुझे घृणा होती है। अभी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, जाओ यहां से।
2: तुम मुझसे घृणा करती हो विनोद?
0: हाँ, घृणा करती हूँ। बिहारी लाला जी।
3: अरे भाभी, आप कैसे?
0: यहाँ तुम्हारा आत्मीय स्त्रियों में कोई नहीं है?
3: आत्मीय भी नहीं, पराई भी नहीं। बुआ है, सो देश के मकान में रहती है।
0: तुम अपने देश के मकान में मुझे ले चलो।
3: तुम्हें क्या कहके वहां ले चलूंगा?
0: दासी कहके, मैं वहां घर का सब काम काज करूंगी।
3: ये बात मन में उठी कैसे?
0: महेंद्र मुझसे प्रेम करता है।
3: ये बात कोई नई नहीं है कि दोबारा सुनने की इच्छा हो।
0: मेरी इच्छा भी नहीं।
3: महेंद्र जिस रास्ते पर चला जा रहा था, उसे उससे किसने हटाया?
0: मैंने, अपने हृदय की आग से मैंने महेंद्र का घर जलाया है। मैंने समझा था कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, पर वो मेरी भूल थी।
3: प्यार करने वाली क्या इस प्रकार आग लगा सकती है?
0: वो तुम्हारे शास्त्रों की बात है, अभी उसे समझकर चलने की बुद्धि मुझ में नहीं है। सुनो लाला जी, मैं निर्लज्ज होकर कह रही हूँ, एक तुम्हें मुझे बचा सकते हो। महेंद्र मुझे चाहता है, पर अंधा है, मुझे समझता नहीं। एक बार मुझे लगा था तुम मुझे समझ गए हो, शायद तुमने मुझ पर श्रद्धा भी की थी। सच कहना, छिपाना नहीं।
3: हाँ, की थी।
0: तुमने भूल नहीं की थी, किंतु यदि समझने ही लगे थे, श्रद्धा ही करने लगे थे, तो वहीं क्यों रुक गए? मुझे प्रेम करने में तुम्हें क्या बाधा थी? मैं आज निर्लज्ज होकर तुमसे कह रही हूं, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरा चला भाग्य, तुम भी आशा के प्रेम में थी। नहीं, तुम क्रोध न कर सकोगी, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तुम आशा को प्यार करते हो, ये बात जब तुम स्वयं नहीं जानते थे, तब भी मैं जान गई थी। आशा में तुमने क्या देखा, मैं समझ नहीं पाती। विधाता के पुरुष को आंख के साथ अंतर्दृष्टि कुछ भी नहीं देते, तुम लोग क्या देखकर भूल जाते हो?
3: भाभी, अब तुम जो सुनाओगी सुनूंगा, पर जो बात कहने की नहीं है वो ना कहो, यही मेरी प्रार्थना है।
0: लाला जी, मैं जानती हूं तुम्हें कहां पीड़ा हो रही है, किंतु जिसकी श्रद्धा मुझे मिली थी और जिसका प्रेम पाने पर मेरा जीवन सार्थक हो जाता, उसके पास इस रात मैं संपूर्ण भय और लज्जा छोड़कर आई हूं। उसमें मेरे मन की कितनी वेदना छिपी है, जरा इस पर विचार कर धीरज धरो। मैं सच कह रही हूं लाला जी, यदि तुम आशा को प्रेम ना करते तो मेरे द्वारा उसका सर्वनाश कभी नहीं होता।
3: आशा का क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया?
0: महेंद्र सब कुछ छोड़कर कल ही मुझे साथ ले घर से निकल जाने को तैयार है।
3: नहीं, ये किसी तरह नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं।
0: महेंद्र को आज कौन रोक सकता है?
3: तुम।
0: किसके लिए रोकूं? तुम्हारी आशा के लिए, मेरा अपना

0: सुख दुख क्या कुछ नहीं, तुम्हारी आशा का भला हो, तुम्हारे महेंद्र की घर गृहस्थी का भला हो, इसके लिए मैं अपने समस्त दावों को छोड़ दूं? इतनी भली मैं नहीं हूं, धर्मशास्त्र की पोथियां मैंने इतनी नहीं पढ़ी हैं। मैं जो छोड़ूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
1: सुनो, मैं भी तुमसे एक बात स्पष्ट कहता हूं कि यह सब जो तुमने कहा है उसका अधिकांश तुम्हारा नहीं है। छोटे दर्जे के नाटक उपन्यास तुमने पढ़े हैं और उससे ही चुराया हुआ है। तुम अगर नितांत अबोध बालिका रहती तो भी संसार में प्रेम से वंचित न रहती। नाटक की नायिका स्टेज पर शोभा देती है, घर में उसे लेकर काम नहीं चल सकता।
0: तुम मुझे क्या करने को कहते हो?
1: असाधारण कुछ न करो, साधारण स्त्रियों की शुभ बुद्धि जो कहती है वही करो। देश चले जाओ, मैं जनानी डिब्बे में बैठाकर तुम्हें देश तक पहुंचा दूंगा।
0: तो आज की रात यहीं रह जाऊं?
1: नहीं, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं।
0: बस इतनी दुर्बलता बनाए रखना लाला जी, पत्थर के देवता की तरह बिल्कुल पवित्र ना हो जाना, किसी बुरे से प्यार करके सरा बुरे बने रहना।
1: विनोद, मैं
0: जीवन सर्वस्व जानती हूं कि सदा के लिए तुम मेरे नहीं हो सकते, किंतु आज एक मुहूर्त के लिए मुझे प्यार करो, उसके बाद मैं अपने उसी वन जंगल में चली जाऊंगी और किसी से कुछ न चाहूंगी। मरण पर्यंत मन में रखने लायक तुम कुछ तो दे दो मुझे, कुछ तो दो।
1: रात 1 बजे पैसेंजर ट्रेन जाती है।
0: मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम मुझे चिट्ठी अवश्य लिखना, मैं रोज तुम्हारी चिट्ठी पाने की प्रतीक्षा करती हूं। तुम मेरे विचारक हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। तुम्हारी 2 लाइन की चिट्ठी ही मेरे निर्वासन में मेरा आहार है। कहते हैं एकाग्र मन से जिसे पुकारा जाता है वह अवश्य आता है। मैं भी तुम्हें पुकार रही हूं, मेरा जीवन सूना है, इस सूनेपन में एक बार तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा। मैं किसी तरह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें आना ही होगा। तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। आ गए प्रभु।
2: आ गया विनोद।
0: तुम चले जाओ यहां से, मैं कहती हूं चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से।
2: मैं इतना कायर नहीं कि तुम्हें इस लोक निंदा की आग में छोड़कर चला जाऊं यहां से, तुम्हें ले ही जाऊंगा। उसके बाद मुझे छोड़ देने की इच्छा हो तो छोड़ देना, मैं कुछ भी बाधा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें छूकर कसम खाता हूं कि तुम जो इच्छा करोगी वही होगा। मैंने अविश्वास के कितने ही काम किए हैं, परंतु आज मेरा विश्वास ना करो। चलो, मैं सवारी लेकर आया हूं।
0: चलो, मैं चलती हूं।
3: माँ,
0: माँ, माँ, लची, जरा जल्दी चलकर माँ को देखिए, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें।
3: माँ, प्रणाम माँ।
4: बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं रे, तू है तो अच्छी तरह।
3: माँ, तुमने अपनी बीमारी का समाचार क्यों नहीं दिया? सुनकर मैं एक क्षण भी रुक सकता था।

0: खोकू, अरे क्या मैं जानती नहीं
1: माँ,
0: तुझे सिर्फ पेट पर नहीं रखा रे, अन्यथा तुझसे बढ़कर दुनिया में मेरा कौन है रे?
1: माँ,
0: माँ, बहुत दुबला हो गया रे, तेरे देख रेख करने वाला कोई नहीं, अब तो बहू लिया मछली बहू।
2: हाँ हाँ जी जी,
0: इसका भार तुम पर रहा, इसे सुखी रखना।
2: मियाँ जी जरा बाहर तो आ।
1: कहो काकी।
2: तुझे नहीं मालूम क्या, महेंद्र विनोदरी को लेकर कहीं चला गया है। एक बार महेंद्र को तो बुला नहीं लाएगा, और देरी करना उचित नहीं है।
1: अच्छा काकी, तुम मां की पथ्य और दवा का ख्याल रखना। काकी काकी, महेंद्र का उद्धार मैं करूंगा।
3: विनोद, ये क्या तुमने फूलों से अपनी बेकी गूंथी? गले में भी फूलों का हार, ये सादा मोटे कपड़े, सारा कमरा, ये बिछोना, सब तरफ फूल ही फूल। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? ये बिछोना जी चाहता है।
4: नहीं नहीं, तुम जाओ, इस बिछोने पर मत बैठना।
3: तो फिर ये श्रृंगार किसके लिए किया है?
4: जिनके लिए किया है वे मेरे हृदय के भीतर हैं।
3: कौन है वो बिहारी?
4: उनका नाम तुम मुंह से न लो।
3: उसी के लिए तुम मेरे साथ इधर उधर घूमती हो?
4: हाँ, उन्हीं के लिए।
3: उसका पता ठिकाना जानती हो?
4: किसी न किसी तरह जान ही लूंगी।
3: मैं किसी भी तरह जाने नहीं दूंगा।
4: न जानने दोगे ना सही, पर मेरे हृदय से उन्हें किसी भी प्रकार निकाल न सकूंगी।
3: ओ, तुम मर क्यों ना गई? तुम्हारे मरने से कितना मंगल होता।
4: जब तक बिहारी की आशा है मैं मर नहीं सकती।
3: अगर तुम मेरी नहीं हुई तो बिहारी की भी नहीं हो सकती, समझी?
4: मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
3: मेरी माँ रो रही है, मेरी स्त्री रो रही है, उनके आंसू मुझे दूर से ही जला रहे हैं। तुम्हारे मरे बिना मुझे उनके आंसू पहुँचने का अवसर नहीं मिलेगा।
4: मैं कहती हूँ तुम अपने घर जाओ, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। ओ, तुम नहीं मानोगे क्यों मुझे बार बार तंग करने के लिए आ जाती हो तुम।
1: महेंद्र, महेंद्र।
4: महेंद्र नहीं है, वो शहर गया है।
1: अच्छा मैं चलता हूं।
4: तुम्हारे पांव पड़ती हो, तुम्हें थोड़ी देर बैठना होगा।
1: कहो क्या कहना है?
4: तुम जो कुछ मन में समझ रहे हो वो बात नहीं है। इस घर को किसी कलंक ने नहीं छुआ है। ये फूल तुम्हारी ही पूजा में सूख गए हैं। तुम्हें यही बैठना होगा। बैठो।
1: लो, बैठ गया।
4: तुमने दयापूर्वक मुझे ये स्थान दिया है, और दूर रहकर भी मैं इसकी रक्षा करूंगी। अच्छा बताओ, मैंने काम से जो पत्र लिखा था उसे तुमने खोलकर उत्तर दिए बिना महेंद्र के हाथ वापस क्यों कर दिया?
1: मुझे तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, और ना ही महेंद्र के हाथों मैंने कोई चिट्ठी वापस की।
4: अच्छा अब समझ में आया। सुनो, मैं सब बातें तुमसे कहती हूं, विश्वास करोगे तो अपना सौभाग्य मानूंगी, ना करोगे तो तुम्हें दोष ना दूंगी।
1: ना ना ना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बिना कुछ कहे ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं। मैं खुद तुमसे घृणा नहीं कर सकता। बस अब तुम एक शब्द भी मत कहो।
4: तो भी बताए बिना जी न सकूंगी। मैंने तुम्हें मन में रखा है, इसीलिए पवित्र बनी रही। आज मैं तुम्हारे

0: चरणों को छूकर कहती हूँ, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है।
1: अच्छा, तो अब रंग भूमि से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश।
2: सुनो महेंद्र, तुम्हें विनोदनी का अपमान करने का अधिकार नहीं है, मैं उससे विवाह करूंगा। और सुन लो महेंद्र, तुम्हारी मां मृत्युशैया पर पड़ी है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। मैं आज रात की गाड़ी से विनोदनी को लेकर चला जाऊंगा।
1: ठीक है, मैं जाता हूं।
0: सुनो, ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? मेरा उपहास कर रहे हो?
2: नहीं, मैं सचमुच तुमसे विवाह कर रहा
0: हूं। इस पापिष्ठा के उद्धार के लिए?
2: नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए।
0: बस यही मेरा चरम पुरस्कार है। इतना जो तुमने स्वीकार किया है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिलने पर भी वो रहेगा नहीं, धर्म उसे कभी सहन नहीं करेगा।
2: क्यों नहीं करेगा?
0: जी जी, ये बात सोचने पर भी लज्जा होती है। मैं विधवा हूं, निंदिता हूं, समस्त समाज में तुम्हें लांछित करूं ये कभी नहीं होगा।
2: किंतु विनोद जी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं।
0: सुनो, दूसरे जन्म में तुम्हें पाने के लिए तपस्या करूंगी, इस जन्म में और कोई आशा नहीं करती। मुझसे विवाह करके तुम सुखी ना हो सकोगे, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, मैं भी संपूर्ण गौरव खो दूंगी। तुम सदा से निर्लिप्त और प्रसन्न रहते आए हो, आज भी वही बने रहो। मैं अन्नपूर्णा काकी के साथ काशी चली जाऊंगी।

आंख की किरकिरी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली के इस रेडियो नाट्य रूपांतरण का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं चौथा और अंतिम भाग।
1: चूंकि बातें गौरी जी की हो रही हैं, तो इसी विषय पर बना रहता हूँ। आपके निर्देशन में उन्होंने किन नाटकों में काम किया?
2: काफी जुलवा में ही थी पहले तो
1: जी,
2: और जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। मतलब जितने शो हो गए, शायद वो एक आध दो शो में नहीं थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन लगभग मैं नहीं होता था कई बार शो में, लेकिन वो जरूर होती थी। तो उन्होंने रेणुका करके उसका कैरेक्टर था, सयाजी, और उनका पेयर होता था वो साथ में, वो भी जोगतीन कम्युनिटी की थी और सयाजी जोगत्या था, तो उसको कर्जा देने वाली, उससे वसूलने वाली, ऐसी एक थोड़ी सी रिच उन्हीं के कम्युनिटी की, पर धाकड़ कैरेक्टर था, उन्होंने वो बखूबी निभाया। उसके बाद एक झुंझ वार्याशी जो मैंने नाटक किया, उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया, क्योंकि उस पूरे नाटक में उनके हिस्से में केवल दो छोटे छोटे सीन्स थे।
1: ओके।
2: लेकिन पूरा नाटक उनके हस्बैंड जो जर्नलिस्ट होता है, उसके करियर को लोगों ने कैसे बर्बाद किया, बड़ा पॉलिटिशियन बनने के लिए, बड़े अहुदे पे जाने के लिए, और वो सारा कैबिन में हो रहा है और ये कैबिन के बाहर बैठी हुई है, और उनको पीठ ऑडियंस की तरफ करके बिठाया था मैंने। वो पता चलता था इनके पीठ से कि ये अंदर के इसको कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, इसके ऊपर क्या क्या परिणाम हो रहा है। और जब वो अंदर आके बर्स्ट आउट होती थी, दैट सीन वॉज मेमोरेबल सीन इन दैट प्ले। उसके पास मी राष्ट्रपति नाम का प्ले मैंने किया था, उसमें भी उन्होंने बहुत मेजर रोल निभाया। तो मुझे लगता है ये दो तीन चार नाटक थे। उसके बाद फिर मैं बाहर भी नाटक करने लगा, व्यावसायिक भी नाटक करने लगा। फिर उसके बाद ये भी हो गया कि चार पांच साल पर ऋत्वी का जन्म

0: तो वो स्कूल में काम करती थी, हफ्ते में 2 बार सेंट कोलंबा जो स्कूल थी वहां जाके बच्चों के साथ क्लास लेती थी। तो इसीलिए वो भी एक उनके लिए मर्यादा हो गई कि व्यावसायिक नाटकों में जाना है तो फिर लंबा जाना पड़ता है, 10-15 दिन के टूर लगते थे उस समय पर उन्होंने अपने लेवल पे स्पर्श नाम के नाटक में काम किया, जो दी गोवा हिंदू एसोसिएशन का व्यावसायिक नाटक था। फिर उन्होंने हैंड्सअप नाम के नाटक में काम किया, जो व्यावसायिक नाटक था। तो उन्होंने अपने लेवल पे बहुत सारे, तू का जातो एक उठाला नाम के नाटक में काम किया, तो बहुत सारे नाटकों में काम किया उन्होंने, सीरियल में काम किया। सह्याद्री की बहुत फेमस इर्जिक नाम की एक धारा चली थी, उसमें उन्होंने कई सारे एपिसोड किए। विजय मेहता के साथ लाइफ लाइन जो उन्होंने सीरियल पहली डायरेक्ट की थी उसमें काम किया। गोटिया जो सीरियल चल रही थी उसमें भी उन्होंने काम किया, बहुत सारी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, फिल्मों में काम किया। फिर उसके आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण फिल्मों में भी काम किया। अशोक सराफ जी के साथ उन्होंने फिल्म संजय सुरकर ने डायरेक्ट की हुई चौकट राजा, उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। उसके बाद अक्षय कुमार जी के साथ खिलाड़ी 420 में उन्होंने हिंदी में काम किया
1: जी।
0: फिर मराठी में और सारी फिल्मों में काम किया। और खास उनका बहुत ज्यादा पॉपुलर काम रहा है वो देवयानी नाम की जो सीरियल लगातार 3-3.5-4 साल चली, उसमें मेजर रोल था उनका, और जिसको हाईएस्ट टीआरपी थी उस सीरियल को। तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं दिल्ली से आता था तब भी वो 30 दिन शूटिंग करती थी, और कभी कभी संडे को एक स्पेशल एपिसोड होता था उसके लिए रात दिन वो भी काम करती थी। ऋत्विक भी उसी समय सीरियल में काम करता था लीड रोल में, मानसीता चित्रकार तो स्टार प्रवाह के ऊपर। तो मैं जब दिल्ली में आता था ये दोनों बिजी होते थे, और ये दिल्ली आते थे कभी कभी जब मैं दिल्ली में था तब, तो ये जैसे ही पहुंचते थे तो दूसरे दिन सुबह फोन आता था कि कल के एपिसोड में प्रॉब्लम हो गया, आप तुरंत निकल आइए
1: लीजिए।
0: तो 1 या 2 दिन से ज्यादा हम रह नहीं पाते थे। तो फिर उन्होंने, दोनों ने भी ये तय किया वो सीरियल कंप्लीट करने के बाद कि अब हम ज्यादा समय सीरियल में नहीं देंगे, फिल्म और नाटक यही है। और उनका सबसे अच्छा मुझे लगा कि पैरेलल जो उन्होंने करियर किया वो चिल्ड्रन थिएटर में
1: जी, बहुत बड़ा योगदान,
0: लीडिंग थिएटर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट इन महाराष्ट्र, कि बहुत सारे बच्चों को उन्होंने करियर तक पहुंचाने का काम किया है। और अपने किस्म का वो नाटक करती है बच्चों के साथ, उनको एक अपना नैक है, उनकी अपनी एक मेथोडोलॉजी बनी है कि 10 दिन में वो बच्चों को पूरा आर पार बदल देती हैं और नाटक भी करवाती हैं अंत में, और जो नाटक बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल भी होते हैं, ह्यूमरस भी होते हैं, और कुछ मैसेज लेके भी वो नाटक करती हैं। तो इसीलिए अपने आप में वो अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, वो एक्ट्रेस भी है, थिएटर की भी है, सिनेमा की भी है, सीरियल की भी है, ये तीनों मीडिया में वो कंफर्टेबल है। और चौथा है वो चिल्ड्रन थिएटर की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटर है। मुझे लगता है कि सुधा कर्मरकर और 2-3 सुलभा देशपांडे और इनके बाद बहुत ज्यादा कांचन सोनटक्की जी के बाद मराठी थिएटर में बहुत ज्यादा उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर में काम किया है
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: जब आपके शुरुआती दो तीन नाटक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और ये लगा कि ये अलग ताप के नाटक हैं, इनके तेवर बहुत अलग हैं, और आपने उसमें अपना बहुत कुछ झोंक दिया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस डायरेक्टर के तत्व जल्दी चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो क्या चीज थी जो लगातार आपको आगे प्रेरित करती रही? और दूसरा, दलित थिएटर मूवमेंट को आप लगातार जिंदा रखे रहे?
1: दलित थिएटर मूवमेंट की बात तो थी, जैसे मैंने कहा कि दो नाटक में तो मैं उसका हीरो था
0: जी,
1: नायक की भूमिका में था। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद एक्चुअल उस मूवमेंट से मेरा संबंध थोड़ा सा विरल हो गया, कम हो गया, लेकिन मैं जो नाटक करता रहा
0: यस,
1: उसमें वो तत्व जो है, मतलब मैंने जिस काम के लिए मैं नाटक में आया था, मैं आज तक उसको भूला नहीं हूं। मैं नाटक में क्यों हूं ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, मुझे कौन सा नाटक करना है ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, मुझे कौन सा नाटक नहीं करना है कितना भी पैसा दे दो वो भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए मेरे नाटकों के जो विषय है, चाहे वो जुलवा है या जाने मन है, मुझे लगता है जिन लोगों की अभिव्यक्ति को, जिन लोगों की जिंदगी को, जिन लोगों के दबेपन को आवाज नहीं मिली है, मुझे लगता है उनको मैं अपने नाटक का विषय बनाता हूं।
0: हमेशा हाशिए पर जो लोग हैं,
1: हाँ, हाशिए पे जो लोग हैं, जो गांव के बाहर है, गांव के अंदर के भी नाटक किए मैंने, पर जो ज्यादातर जो विषय चुने मैंने वो गांव के बाहर है, उनको गांव में एंट्री नहीं है। अब देखिए, झुलवा झुकते झुकतीनी पर है, एक झुंझ वारियाशी है, एब्सोल्युटली डायरेक्ट ये मेन स्ट्रीम कंटेंट था कि किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे सत्ता कारण में हो रहा है और उसमें इनोसेंट टैलेंट का बलि कैसे चढ़ाया जाता है, और वो भी जो जर्नलिस्ट है। उसके बाद मैंने नाटक किया दूसरा सामना, जो सतीश आलेकर जी ने लिखा, जो हमारी ये शुगर सहकार मूवमेंट है उसके अंदर किस तरीके से फिर वही दलित का बलि कैसे चढ़ाया जाता है। पहला सामना तो जो था वो फिल्म थी, उसका सिक्वेल था जो लिखा गया कि जो दलित का बेटा है जो आईएएस है और आज वो अपर कास्ट का है क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया और उसको मालूम नहीं, और एक दिन अचानक उसको मालूम हो जाता है कि वो जिस जाति से और जिस संस्कार को बिलोंग करता है उसका है ही नहीं, जो भी आईएएस होने के बावजूद भी वो तो है दलित। उसके बाद जो टूटना है उसका, वो टूटना विक्रम गोखले वो रोल करते थे और दूसरा विनय आप्टे करते थे और तीसरा इला भाटे का पहला नाटक था
0: जी।
1: तो ये उस नाटक में भी वही बात अलग किस्म से थी, नाती गोती था, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने के बाद उस फैमिली की वाताहत कैसे होती है, उस फैमिली की जिसको हम मराठी में वाट कैसे लग जाती है और उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है, इस तरीके का विषय था
0: जी।
1: जाने मन का बिल्कुल किन्नरों के जीवन पे विषय था उसका, लड़ी नजरिया पे डेमोक्रेसी की कैसी हम लोगों ने 12 बजा दिए हैं उस कॉन्सेप्ट के, और हम अपनी तरीके की डेमोक्रेसी कैसे लाद रहे हैं, ये विषय था। तो जितने भी विषय हैं, ती फुलराणी तक, रणांगणी एक ऐसा विषय था कि ये भारतीय आदमी

0: जीतता क्यों नहीं है? क्या ऐसे उसमें खून में, संस्कार में, उसके जीवन में ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा वो विष घोला है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करता? ये बेदिली है, ये धोखा देना है, ये भारतीय स्वभाव में कैसे है? और उसके बाद ज्यादा तो मराठी में कैसे है? पानीपत का थर्ड वॉर हम हारे क्या जीते? इसको लेकर वो सारा का सारा असेसमेंट था भारतीय मन का, भारतीय स्वभाव का, बिल्कुल बहुत तटस्थता से किया हुआ, और जो नाटक बहुत अंतर्मुख करता था
1: जी,
0: और जिसके 700-750 शो, मतलब दैट वाज सपोज टू बी फर्स्ट 70 mm प्ले ऑन मराठी स्टेज,
1: बिल्कुल,
0: जिसमें भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए जिनको ऑस्कर मिला था, उन्होंने जीवन में पहली बार नाटक के लिए कॉस्ट्यूम किए।
1: वाह।
0: मंगेश पाड़गांवकर जी ने गाने लिखे।
1: क्या बात है।
0: ये ऐसे ऐसे दिग्गज, पहले कुसुमाग्रज गाने लिखने वाले थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, फिर उसके बाद फिर हमने मंगेश पाड़गांवकर जी से गाने लिखवाए, अनंत अम्मेम्बल ने उसमें म्यूजिक किया। ये सारा का सारा मुझे लगता है कि वो भी एक अलग किस्म का विषय था। तो लेट्स, पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये कह रहे कि हमारे पास जीतने का जज्बा क्यों नहीं है? जीतने के बाद भी हमारे आसपास क्या है कि दिल्ली मराठों ने जीतने के बाद भी उस समय मराठों को दिल्ली के गद्दे पे नहीं बिठाया? हमारे नेता ने क्या थी उसके पीछे की सोच? क्योंकि उससे पहले ही हमारे कारोबारियों ने दिल्ली पंजाब के राजाओं को बेच दी थी
1: जी।
0: तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर कुरघोड़ी करने का स्वभाव है, एक तरीके से धोखा देने का स्वभाव है, कभी भी कोई भी आदमी एक दूसरे से बेदिली करने का स्वभाव जो है, इसको उस नाटक में क्या कहते हसीये पे रखा था। और वो एक नाटक लोगों को लगा था पानीपत थर्ड यू आर जैसे हार गए वैसे ये नाटक भी बहुत जोर से गिरेगा, उसकी आवाज सुनने के लिए सारे कान बेताब थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नाटक ने जो खौफ है मराठी मानस में, कुछ भी हुआ तो पानीपत हुआ बोलते हैं हम उसका, डिजास्टरस एक्सपीरियंस इज पानीपत, तो उस पानीपत शब्द से हमने उस नाटक ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया। पानीपत वॉज नॉट डिजास्टर बट इट वॉज द बिगेस्ट वॉरफेयर प्लेड बाय मराठाज हेल्प ऑफ अदर पीपल इन इंडिया, और जिसमें मुसलमान भी थे
1: जी।
0: तो ये भूमि पे प्यार करने वाले लोगों का जो एक गठ्ठा था वो मरते दम तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहे, मरते रहे, उसकी कहानी थी ये रणांगण।
1: क्या बात है। और फिर ती फूलरानी आया,
0: उसके बाद ती फूलरानी आया, उसके बाद ये मध्यम व्यय आयोग किया, जब एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का पहला प्रोडक्शन कौन सा किया जाए, तो हमने कहा चलो परंपरा से शुरू किया जाए। कालिदास भास ये पहला नाटककार माना जाता है, तो हमने उनके मध्यम व्यय आयोग से शुरू किया। उसमें भी मुझे हिडम्बा है वो मुझे दिखाई दी, मैं क्योंकि केरल में रहा था, द्रविड़ में मातृसत्ता कुटुंब पद्धति है और आर्य में पितृसत्ताक है, तो उनकी जो प्रेम की कहानी है भीम की और हिडम्बा की और उनका बेटा जो घटोत्कच है, मुझे लगा कि जो औरत हमारे स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थ के अड़े आती हैं, जो भी है, हम किसी को डेरोगेटिव टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हम हिडम्बा बोल देते हैं। अरे यार उसके हिडम्बा के क्या चक्कर में आता है, मतलब देखने में वो खूबसूरत भी हो तो जो हमारे स्वार्थ के आड़े आता है उसका कैरेक्टर असेसिनेट करने का हमारा पुराना स्वभाव है
1: जी जी जी।
0: उस स्वभाव को पकड़कर वो नाटक बनाया हुआ है। और फिर आर्य और अनार्य के बीच की जो राजनीति है वो जेंडर बेस्ड भी है, वो क्लास बेस्ड भी है, वो हर तरीके की राजनीति है। और वो जब सवाल पूछती है भीम को, और बेटा सवाल पूछता है कि आप कहां गए थे, बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चा बड़ा होने तक, वॉरियर होने तक वो वापस आके देखा नहीं उन्होंने, उसके बारे में जो सवाल पूछती है बोलती है कि अगर होती मैं आर्य स्त्री तो क्या होता आपका यही उत्तर?
1: वाह।
0: तब तो राजदरबार बैठते, तब तो तहकीकात होती, चर्चाएं होती, न्याय मंडली बैठती, न्याय होता। चूंकि मैं आर्य नहीं हूं इसलिए आपको लगा कि यू कैन इग्नोर मी।
1: ओहो।
0: तो इस तरीके के मुझे लगता है बहुत बुनियादी जो सवाल है हमारे ही समाज के विसंगति के, वो कहीं ना कहीं मेरे नाटक उठाते हैं। और वो केवल कोई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं उठाते हैं, मुझे लगता है वो अंतर्मुख करने के लिए उठाते हैं। क्योंकि नाटक का मूल जो स्वभाव है वो किसके लिए नाटक करना है
1: जी?
0: नाटक केवल लोगों को हा हा हू हू करके जाओ घर में,
1: केवल मनोरंजन,
0: केवल मनोरंजन के लिए नाटक नहीं।

0: मनोरंजन तो रुलाना भी है। नौ रसों में से कोई ना कोई एक रस ऑडियंस के मन में पैदा करना नाटक का मूल रस है, मूल स्वभाव है, मूल चिंतन है, मूल भाव है। हम ये कहते हैं कि नाटक इसीलिए करते हैं ताकि हम समाज को उसका आईना दिखाए।
1: बिल्कुल।
0: उसमें विसंगतियां क्या है, संगतियां क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है, वो आईना दिखा के हम समाज में एक अच्छा समाज कैसे हो, कल्याणकारी समाज कैसे हो, ये करने के लिए, एक आशावादी दृष्टिकोण देने के लिए नाटक होता है। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के खिलाफ कोई विद्रोह बार बार दिखाने के लिए नहीं है
1: जी,
0: पर वो विसंगतियां हैं, जो विरोधाभास है, वो सारा तो दिखाना नाटक का काम है ना। सिनेमा नहीं करेगा, नाटक नहीं करेगा, साहित्य नहीं करेगा, पेंटिंग नहीं करेगी तो कौन करेगा।
1: बिल्कुल। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: समाज को समृद्ध भी करना है, संवेदनशील भी करना है और आगे अच्छा समाज बनाने के लिए सोच के लेवल पर अग्रेसर भी बनाना है। इसके लिए ये मुझे लगता है कला दालन है,
1: बिल्कुल
0: ये संस्कृति का दालन यही है कि वो आपको एनरिच करता है
1: जी,
0: एक आपके दायरे का विस्तार करता है, सोच का विस्तार करता है, आपकी दिमाग में जो दीवारें आपने बनाई है उसको ढाने का काम करता है, क्योंकि आखिरी इंसान और आप दोनों एक ही है, क्योंकि आप एक भूमि के हैं,
1: बिल्कुल
0: आप एक हैं, क्योंकि नैसर्गिक अधिकार आपको दोनों को एक ही दिया है और जिसका नाम है शांति से जीना। मुझे लगता है वो नाटक का मूल पर्पज है। अब वो पर्पज हम किस एंगल से दिखाए वो आपका तरीका है। अगर हम बीरबल की एंगल से दिखाए तो बीरबल वही करता था जो अकबर को विसंगतियों का, विरोधाभास का वो आईना ही तो दिखाता था। वो भी नाटक ना करे तो कौन करेगा, वो भी सिनेमा ना करेगा तो कौन करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यवस्था में नाटक का रोल यही होता है, व्यवस्था को अपना मन खुला होकर। इसीलिए एक कहावत है ना कि एक ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी समाज को आपको समझना है, मान लीजिए आप यूरोप गए या किसी भी समाज में कोई भी देश में चले गए, आपको उस समाज को फास्ट समझना है तो आप जाके उसके 5-6

0: नाटक देख लीजिए।
1: क्या बात है,
0: उस समाज का आकलन उस 5, 6, 7, 8 नाटकों में से जो आपको जितने जल्दी मिलेगा उतना एक साल भर रहने से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आईना दिखाता है। अगर ये सच्चाई है तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये निराशावाद है, ये तुलनात्मक फैसिलिटी का कम आंकना है एक दूसरे को, ये जो दीवारें खड़ी करना है इंसान इंसान में, वो चाहे धर्म की है, जाति की है, परंपरा की है, वर्ण की है, वर्ग की है, कुल की है, परिवार की है, इससे क्या बनने वाला है?
1: जी,
0: इससे कुछ नहीं बनने वाला। अगर हमें एक स्ट्रेंथफुल देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें सारे समाज की सारी क्षमताओं को साथ लेकर इस देश का जब विकास करेंगे तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें विश्व गुरु बनाइए।
1: जी, एनसीपीए में एक रिकॉर्ड आपने कायम किया था, एक ही दिन में 3 अलग अलग भाषाओं के नाटक हुए।
0: ये मध्यम व्यायोग नाटक जो था, इसको मैंने हमारे एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए एज अ डेमो ऑफ क्लासिकल इंडियन थिएटर किया था। उसके बाद एक 10-12 शो के बाद वो खत्म हो गया और मैं भूल गया उस नाटक को। ये 2004 में किया था, 5 साल में वो बैच निकल गई, उसके बाद भूल गए। कुछ सालों बाद जैसे मैंने कहा कि भास ने जो लिखे हुए नाटक में जो अधूरे छोड़े हुए थ्रेड्स है उसका कहीं ना कहीं मुझे हंट आउट करने लगे। बेटा भी पूछ रहा है और माता भी पूछ रही हिडम्बा भीम जी को, वो सारे सवाल बाद में दिखाई देने लगे। यार मैंने कहा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग नाटक हो सकता है, इसका नया संस्करण तैयार करना पड़ेगा। ये रंगावृति नहीं तैयार करनी पड़ेगी, जहां भास रुके हैं उसके आगे भी तो हम नाटक को ले जा सकते हैं। इसको लेके हमने वो नाटक करने की बात सोची। पहले मराठी में करते हैं, फिर करते करते पता चला कि हम हिंदी में क्यों ना करें इसको।
1: क्या बात है,
0: तो हमने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके उसकी शुरुआत की। फिर ऐसा लगा कि यार ये हिंदी मराठी तो ठीक है, लेकिन जो कुछ मराठी या हिंदी भाषी लोग हैं, जिसको जब तक आप अंग्रेजी में कुछ नहीं करते तब तक वो आपको समझना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को समझना नहीं चाहते, उनके लिए हम अंग्रेजी क्यों ना करें। अब 3 भाषाएं हो गई, तो 3 भाषाओं में हमको लगा कि एक ही टीम के साथ करें, नहीं तो बड़ी सर्कस हो जाती। तो इसीलिए सारे मराठी स्पीकिंग एक्टर्स है मूलतः, उसी को हिंदी भी सिखाई। उसमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी आती थी, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो अंग्रेजी भी हमारी इंडियन इंग्लिश है। तो ये सारे 3 भाषाओं में 3 जुलाई 2011 को एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इस नाटक को लेके हमने सोचा कि इसका शुभारंभ करेंगे
1: जी,
0: और 3 नाटक एक ही दिन में ओपन करेंगे। एक ही टीम, एक ही डेट, एक ही थिएटर।
1: वाह।
0: तो हमने दोपहर 2 बजे मराठी में नाटक ओपन किया, वही नाटक प्रिया बावरी। उसके 3 अलग अलग नाम जानबूझ के रखे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि मराठी कौन सा है, हिंदी कौन सा है। दोपहर 4:30 बजे हमने वही से नाटक किया मोहे पिया हिंदी में, और शाम को 7 बजे वही नाटक किया हमने ओ माय लव इस नाम से। वही नाटक 3 भाषाओं में, सेम फॉर्म, सेम कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज सेम। भाषा अलग है, गाने अलग है, सब अलग है।
1: गजब।
0: और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया, और आज तक वो विश्व रिकॉर्ड ऐसे ही है, अभी तक किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की उसको। तो हम ही शायद तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको और एक भाषा में, गुजराती में करके 4 भाषाओं में एक ही दिन में कर लें। तो इसको लेकर ऐसा काम हो गया और वो नाटक ने पूरे देश में गजब ढा दिया
1: जी।
0: मराठी में हमने 150-200 शो किए, हिंदी में अभी भी वो चल रहा है मोहे पिया, अभी 300 शो होने को आए हैं अलग से हिंदी में
1: जी।
0: वो कभी हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अंग्रेजी के भी हमने 70-75 शो किए। तो हम ये 15 दिन की नोटिस पे हम किसी भी भाषा में ये नाटक कर सकते हैं।
1: क्या कमाल है।
0: हाँ, तो अभी बहुत सारे भारत भवन में भी, दिल्ली में भी संगीत नाटक अकादमी है या और कोई है, वो चाह रहे कि ये इस तरीके का प्रयोग हम दिल्ली में भी करें या और शहरों में भी करें। इस तरीके के आमंत्रण न्योते आ रहे हैं, अब हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं।
1: एक और कमाल है आपका, एनएसडी के 2 अवार्ड आपको मिले।
0: जैसे एक संगीत, क्योंकि हमारे देश में एक ही अवार्ड था जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलने के बाद एक आपका रुतबा माना जाता था कि आपके योगदान को माना जाता था। मैं ये अनुपम खेर जी चेयरमैन थे तब, उन्होंने मुझे सोसाइटी का मेंबर बनाया। उसी समय हमने ये कहा कि भाई पूरे देश को

0: संगीत नाटक अकादमी तो पूरे देश को लेकर काम करती हैं। अब उसमें ज्यादातर अलग अलग भाषाओं में एनएसडी के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, पर अवार्ड देते समय ये तो ध्यान में रखा जाएगा कि भाई हर साल एनएसडी एल्यूमिनाई को तो वहां अवार्ड नहीं दिया जाएगा ना।
1: जी,
0: दूसरे भी भाषाओं के लोग है, और भी लोग है जिन्होंने भारतीय थिएटर को जिंदा रखा है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही स्वाभिमान पूर्वक है। तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें दो अवार्ड स्टार्ट करने चाहिए, नहीं तो बूढ़ा होने तक जब तक उसको दो आदमी उठा के पकड़ के ले जाते तब उसके बाद अवार्ड देके उसका इंस्पिरेशन क्या है।
1: जी,
0: तो हमने एक सुझाव दिया था कि भाई ऐसे दो अवार्ड, एक 50 साल के ऊपर जो रंगकर्मी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है एनएसडी के एल्यूमिनाई ने उसको एक अवार्ड दिया जाए, और 50 के नीचे जो भी नया हो 20-25 साल से लेके उस रेंज में एक अवार्ड दिया जाए, ताकि एनएसडी जब एल्यूमिनाई को अवार्ड देगी तो वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार है।
1: जी,
0: तो हम एनएसडी के एल्यूमिनाई को ही इंस्पायर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर करते रहे, काम करते रहे। तो फिर वो सोसाइटी ने मंजूर कर लिया और एक युवा जो आवास पुरस्कार था उसको मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार की हैसियत से उसका नाम दिया, और जो दूसरा था जो सीनियर को मिल रहा है वो बीवी कारण स्मृति पुरस्कार।
1: जी,
0: और हम भूल गए वो सोसाइटी में, फिर उन्होंने कोई कमेटी वगैरह बिठा दी और पहला ही जो पुरस्कार डिक्लेयर किया कि जो सीनियर कैटेगरी में पुरस्कार जो दिया गया बीवी कारण पुरस्कार वो रतन थियाम जी को दिया गया,
1: और गुरु,
0: हाँ हमारे गुरु मतलब
1: जी,
0: और दूसरा जो पुरस्कार युवा रंगकर्मी का पुरस्कार तो वो अमन केंद्रे को दिया गया।
1: क्या बात
0: है, तब तक के लिए योगदान के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और जब मैं एनएसडी छोड़ने के बाद, मतलब मेरा टर्म खत्म होने के बाद, 2-3 साल वो अवार्ड दे नहीं पाए थे कई कारणों की वजह से, उसके बाद 2-4 साल नहीं दे पाए थे, तो फिर हमारे बाद के डायरेक्टर ने वो सारे पुरस्कार की घोषणाएं की समिति गठित करके, तो उसमें से जो दूसरा पुरस्कार जो मिलता है
1: सीनियर वाला
0: वो मैं पहला एल्यूमिनाई हूं कि दोनों भी पुरस्कार, पहला तो स्मृति मिला ही था मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार, और ये बीवी कारण स्मृति पुरस्कार भी मुझे दिया गया। एंड ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि भाई ये दोनों पुरस्कार पाने वाला पहला एल्यूमिनाई ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वामन केंद्र है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। और छोरी

0: लेकिन एक रिकॉर्ड और भी तो है कि वहीं पढ़ के वहीं के डायरेक्टर भी बने
1: जी,
0: और एक तूफानी कार्यकाल आपने किया जिसमें बहुत वाइब्रेंट काम वहां हुआ।
1: यस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पहले भी कई सारे, मतलब जब बी वी कारंद भी वहीं पढ़े थे वो डायरेक्टर हुए थे, ही वॉज फर्स्ट एग्जाम्पल
0: जी।
1: उसके बाद बी एम शाह तो एनएसडी में नहीं पढ़े थे, लेकिन रतन थियाम हो गए, पर उन्होंने अपना डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा नहीं किया, पर हुए वो भी। मोहन महर्षि हुए, पर उनके कार्यकाल छोटे छोटे रहे, मोहन महर्षि 2 साल के लिए रहे। उसके बाद कीर्ति जैन रही, उसके बाद अंकुर जी रहे
0: जी।
1: तो ये सारे जो थे वो वहीं पढ़े और वहीं डायरेक्टर हो गए। पर महाराष्ट्र का ये पहला रंगकर्मी था जिसको सम्मानपूर्वक वहां पर विद्यार्थी के हैसियत से नहीं, पर बाहर के कंट्रीब्यूशन के हैसियत से आमंत्रित किया गया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो वहां पढ़ा था और उसके बाद डायरेक्टर बना, कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये तो दर्ज हो ही जाएगा, पर वहां के इतिहास में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें से थोड़ा बहुत नाम तो ले ही लेंगे लोग, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए भी वो कार्यकाल वाइब्रेंट रहा, ऐसा लोग अब कह रहे हैं। तब तो क्या होता है कि कोई भी कार्यकाल का महत्व योगदान रजिस्टर होने के लिए बीच में काल जाना चाहिए होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वो इतना ही था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करने गया था, जितना संभव है 24 घंटे से 36 घंटा कैसे हो सकता है, ये कोशिश करके मुझे लगता है कि वहां की खूबसूरती, मतलब कैंपस की खूबसूरती, कैंपस का आर्टिस्टिक होना, एकेडमिक जो हमारी गतिविधियां हैं उसको पुख्ता करना, जितनी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उसको पहले सुनना, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाकी चीजों के लिए नहीं, पहले विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है
0: जी।
1: वो

0: ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें क्या क्या मैं था तब उस समय में कौन सा माहौल था, फिर क्या खामियां थी, क्योंकि मैं यहां मुंबई विश्वविद्यालय में 10 साल एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स खड़ा कर चुका था, तो यहां क्या प्लस पॉइंट्स है, वो सारे उसमें ढालते ढालते ढालते ढालते एक बहुत स्ट्रांग एकेडमिक स्ट्रेंथ वाले विद्यार्थी पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को एक्टिंग में काम मिले, जो एक्टर्स है डायरेक्शन में डायरेक्टर को स्पेशलाइजेशन तीन कर दिए, दो ही थे, एक एक्टिंग था और डिजाइन एंड स्टेज टेक्निक्स था, तो इसमें से डायरेक्शन हटाता था वो डिजाइनर को ही डायरेक्ट करने के लिए बोल देते थे, तो मैंने कहा ये उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है ना। डायरेक्टर एक सेपरेट टेम्परामेंट है, वो अलग स्वभाव है, डिजाइनर एक अलग स्वभाव है, एक्टर एक अलग स्वभाव है, तो सिलेक्शन से ही फिर हमने वो सारा माहौल बदलने की कोशिश की और तीनों स्पेशलाइजेशन वापस शुरुआत करके, तो एक ही साथ एक बैच के साथ दो दो नाटक करने से एक्टर को काम मिलना शुरू हो गया, और जो एक्टर भी और डायरेक्टर भी, तो दोनों को भी ये कॉन्फिडेंस मिलना, और डिजाइनर कॉमन होते थे, उनको तो दो दो प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता था, फिर उनको अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन तो करना ही करना है, तो इस तरीके से मुझे लगा कि एकेडमिक माहौल बहुत स्ट्रांग बन गया। फैकल्टी जितनी संभवतः देश की और दुनिया की लाने की कोशिश की गई, तो ये सारा है, उसके साथ साथ उसका विस्तार किया, जो लोग कहते थे कि वो नेशनल नहीं बचा है, उसका थोड़ा सा स्वभाव दिल्ली के आसपास का बना है, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, मतलब एकेडमिक एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन उसका विस्तार हो। मतलब मेरे दिमाग में यह था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल एल्यूमिनाई को यह ना लगे कि यह हमारी संस्था है, पर जो भी थिएटर कर रहा है, वो चाहे एमेटर थिएटर कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल कर रहा है, चाहे पैरेलल कर रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे मूवमेंट की हैसियत से थिएटर कर रहा है, चाहे चिल्ड्रन थिएटर कर रहा है, कोई भी किस्म का थिएटर कर रहा है, फार्मर का कर रहा है, कामगारों का कर रहा है, वो हर किसी को कोने में खड़े हुए किसी खेत में थिएटर करने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरी है,
1: वाह,
0: और मैं वहां जा सकता हूं, या वो मुझ तक पहुंच सकती है और मुझे लाभ दिला सकती है, वो ट्रेनिंग के लेवल पर हो, फेस्टिवल के लेवल पर हो, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शंस इन फेस्टिवल्स यहां से हो, क्वालिटी इज द ओनली क्राइटेरिया।
1: यस,
0: मैं हमेशा ये कहता था, भारत रंग महोत्सव हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जश्ने बचपन हो, बाल संग हो, कोई भी हो, या हमारे आदि क्या कहते हैं ये क्लासिकल थिएटर का फेस्टिवल हमने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में अलग फेस्टिवल शुरू किए, इस सब में एक ही था, क्वालिटी इज इन सेंटर। मैं ये कहता था भारंगम में कि अगर कल को मेरे पिताजी का नाटक आता है और यहां कंसीडर करने के लायक नहीं है, तो उस डीवीडी को फेंक दो और तोड़ दो, कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं, कोई किसी का नहीं है, जो थिएटर क्वालिटी का काम करता है वो हम सबका है।
1: क्या बात है।
0: और उसको ही सेंटर में रख के कोशिश यही की गई कि 5 साल उस एनएसडी का जो क्वालिटेटिव माहौल है उसको भी एनहांस करने की कोशिश की गई, बहुत विनम्रता के साथ ये सब कह रहा हूं। दूसरा मुझे लगा कि जो विस्तार होना चाहिए था उसका, जैसे बंगलोर में हमारा एक सेंटर था पर वो रिसोर्स सेंटर बन के रह गया, तो हमने कहा ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट किया 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और वहां बच्चों को स्कॉलरशिप देके अब वहां 20 बच्चे हर साल पढ़ते हैं। जो एक सेंटर नया क्लासिकल थिएटर में, जो हमारी धारणा थी कि एक संस्कृत शैली का थिएटर जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, कहीं और से थिएटर सीख के आया और उसको स्पेशलाइजेशन करना है, उसके लिए मौका ढूंढना चाहिए, रखना चाहिए, इसलिए वाराणसी में 1 साल का कोर्स शुरू किया, सेंटर शुरू किया, और वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा सीखने के लिए।
1: जी,
0: जो सिक्किम का सेंटर था वो 1 साल का था, हमने कहा इसको 2 साल करिए, फिर उसको 2 साल करने का सारा जो कुछ था उसको करने की कोशिश की। एक त्रिपुरा में था, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, तो हमने कहा नहीं है, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग जो थिएटर एजुकेशन में निर्माण करना इतना ही उसका काम नहीं है, आर्टिस्ट निर्माण करना भी उसका काम होना चाहिए, थिएटर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर भी निर्माण करे और हम टीचर भी निर्माण करे, इसी के लिए वो सेंटर, और दोनों सेंटर नॉर्थ ईस्ट कन्फाइंड हो कि वहां के लोगों के लिए बनाएं, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उस 7 और 8 स्टेट को होना चाहिए। तो इस तरीके से मुंबई सेंटर का जो लेआउट था वो पूरा सैंक्शन करके रखा था।

0: जम्मू कश्मीर में भी अभी अभी सेंटर खुल गया मेरे आने के बाद, तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें वहां करने का मौका मिला। फिर थिएटर ओलंपिक्स एक सबसे बड़ी जो मतलब भारत रंग महोत्सव का तो हमने ये तो किया ही किया, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि थिएटर ओलंपिक्स नाम की कोई एक चीज होती है। तो जब मैंने उसका इतिहास ढूंढने की कोशिश की तो जो पहले ओलंपिक होता था जो स्पोर्ट्स का है उसमें स्पोर्ट्स भी होता था, उसमें थिएटर भी होता था, म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, विजुअल आर्ट्स भी होती थी, ये सब मिलके ओलंपिक होता था।
1: ओके
0: पर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले ने उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया और ये सब पीछे छूट गए। फिर थिएटर के कुछ लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि यार हम इसका हिस्सा थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ से गया। तो कुछ विद्वानों ने थिएटर के रंगकर्मियों ने यह तय किया कि हम अपना थिएटर ओलंपिक्स क्यों ना शुरू करें, और फिर वो शुरू किया। पहला वो ग्रीस में हुआ और ये मुझे पता चला फिर बाद में तुर्की में हो गया, फिर कहीं जापान में हो गया, चाइना में हो गया, कनाडा में, यहां वहां हो गया, और आठवां होना है ये मुझे पता चला। तो मैंने अपने सोसाइटी से कहा कि भाई ये ओलंपिक अगर हमें मिलता है तो हमको लेना चाहिए। फिर हमारी मिनिस्ट्री है जो केंद्र सरकार की, उनको कहा तो उनकी परमिशन ले ली और आठवां थिएटर ओलंपिक्स भारत में हो इसके लिए हमने कमिटी से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा हमें आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो हमने बुलाया उनको, आइए, न्योता दिया, वो आए, सब देख लिया, दिल्ली देखा, मुंबई देखा, ये दो चार जगह देखा, और उन्होंने कहा नहीं है ओलंपिक होने लायक तो यहाँ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनएसडी कैन हैंडल इट, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल तो हैंडल करती ही है। तो फिर उन्होंने वो हमको मौका दिया और सौभाग्य की बात है कि 51 दिन का तो आठवां थिएटर ओलंपिक्स हो गया जो 17 राज्यों में हुआ, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम तक और इधर मणिपुर और गुवाहाटी से लेके आसाम से लेके इधर अहमदाबाद तक, मुंबई, बंगलोर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सारे उसके सेंटर थे। 17 सेंटर में 51 दिन में हमने 450 नाटक, 32 देशों का पार्टिसिपेशन, ये मेजर नाटक जो मेन थिएटर में किए उसी को यूथ से जोड़ने के लिए हमने 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 300 नाटक सेलेक्ट करके, मतलब उसमें भी 1100 नाटक आए थे, एक कमेटी ने 300 नाटक सेलेक्ट किए, वो 300 शो और फोक, ट्राइबल और स्ट्रीट प्लेयर्स जो है हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ, वो कव्वाली से लेके सारा कुछ, तो उनके 600-650 शो,
1: तो ये तो कितने,
0: ये लगभग 1500 शो, 1500 शो हमने उसमें 51 दिन में किए और जिसमें 25-26 हजार आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो गए देश के और दुनिया के।
1: तो बहुत भव्य है,
0: बहुत हो गया। ये ऐसा माना गया कि ये भारत के इतिहास का नहीं, रंग जगत के इतिहास का नहीं, नाटक जगत के इतिहास का नहीं है, दुनिया के इतिहास का, नाटक जगत के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट किसी ने किया हो तो भारत देश ने किया, और वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया।
1: वाह वाह,
0: ये मुझे लगता है उसका इंपैक्ट हुआ। और एक बहुत अच्छी बात है, जितने नाटक वाले थे हमने 125 डायरेक्टर को इनवाइट किया जिन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जिस किसी भी भाषा में, उनको हमने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक इनवाइट किया कि भाई आप अपना बेस्ट प्रोडक्शन लेके इसमें शामिल हो जाइए। अब 125 तो नहीं हो पाए लेकिन 105 इनवाइटेड डायरेक्टर ने उसमें नाटक किए।
1: वाह,
0: कॉम्पिटेटिव फेस्टिवल में हमने कहा था कि उसमें 1200 नाटक आ गए, उसमें से 250 नाटक चुन लिए गए और विदेशी नाटक 32 देशों के नाटक आ गए। तो ऐसा मिलाकर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इवेंट हो चुका है, और इतना बड़ा क्वालिटेटिव थिएटर फेस्टिवल मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद तो एक्टिविटी चलती रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए और सौभाग्य से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, और उसका मैं डायरेक्टर था, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: सिनेमा के आकर्षण से आप कैसे बचे रहे अपने पूरे जीवन काल में?
1: नहीं, मुझे मालूम था कि मुझे पहले अपनी स्पेस नाटक में पैदा करना जरूरी है, क्योंकि मेरी जगह है। मैं कहीं भी जाऊं, भूला भटका हो जाऊं, पर गिरने के बाद मुझे अपनी एक जगह चाहिए, वो पुख्ता जगह तैयार होना जरूरी था। पर वो क्या हो गया कि मैं एकेडमिक से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया पहले से ही।
0: जी जी,
1: एनएसडी हो गया, रिसर्च हो गया, आके एनसीपीएम में 10 साल, फिर वही एसोसिएट हो गया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 साल हो गया। जब भी मैंने थिएटर से फिल्म की तरफ जाने की कोशिश की, रंग देवता ने किसी न किसी बहाने मुझे वापस खींच लिया।
0: वहां नहीं जाना है,
1: वहां जाने नहीं दिया। मतलब ऐसी कोई परेशानियां या उस तरीके की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी की कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करो। मतलब मैं जाने मन नाटक किया और रणांगण किया, दो बहुत मेजर प्लेस थे मेरे हिसाब से, एक ही साल के आसपास किए मैंने। और ये तय किया था कि आप 5 साल में नाटक नहीं करूंगा, तब भी ये नाटक चलते रहेंगे और नाम गूंजता रहेगा, तो अब मैं फिल्म करूंगा। तो कोई एक प्रोड्यूसर उस समय मुझसे बहुत बड़ा मेगा इवेंट करना चाह रहे थे फिल्म में, और मेगा कंटेंट पे वो बजट लेके बैठे हुए थे। तो उसी दरमियान डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, जो वाइस चांसलर थे मुंबई विश्वविद्यालय के, बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो गए, फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो उन्होंने एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी में मुझे भी लिया गया और बोले कि 35 साल से मैंने देखा हिस्ट्री मुंबई विश्वविद्यालय में, नाटक का विभाग हो इसके लिए इतनी कमेटियां हो गई, इतना हो गया, पर आज तक वो हो नहीं पाया। उसमें जब्बार पटेल थे, रामू केंकरे थे, मैं था, उसके बाद रघुवीर तड़ाशीलकर थे, जयंत पवार, ऐसे 7-8 लोग थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई कमेटी बिमिटी, आपकी कमेटी है अंतिम है, अब आपको 4 महीने के अंदर मुझे ये विभाग शुरू करना।
0: अरे गजब,
1: आप जो जो चाहिए बताइए मुझे क्या चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा एक सिलेबस दे दो, तो हमने कहीं यहां वहां से कटिंग पेस्टिंग करके एक सिलेबस दे दिया उनको, जो उन्होंने अकेडमी काउंसिल में पारित कर लिया, मैनेजमेंट काउंसिल में पारित कर लिया कि हमको ये डिपार्टमेंट खोलना है। 4वें महीने में उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: वो 4 महीना मेरे पीछे पड़े रहे कि तुमको इसका हेड होना है, तो मैंने मना कि मुझे तो जाना है, मैं तो सिनेमा करने वाला हूं।
0: कोई मेगा प्रोजेक्ट है?
1: हाँ, मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर उन्होंने जब्बार पटेल जी को, दामू केंकरे जी को, ये सारे हमारे दोस्तों को बोला कि नहीं, इसको राजी करो। तो फिर वो होते होते फिर सुशील कुमार शिंदे जी तक बात पहुंच गई, और एक दिन उनका भी फोन आ गया कि वैसे भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है मुंबई में, तो इसीलिए अगर वो सही आदमी के हाथ में नहीं जाएगा तो फिर ये आप लोग रोते रहोगे, तो वो जो कह रहे हैं मुणगेकर उसकी बात मानो, और मैं आपको महाराष्ट्र की जनता की ओर से बोल रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि 1-2-3 साल दे दो, 2 दिन 3-3 घंटा 4 घंटा दे दो, बाकी अपना काम करते रहो। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है सर, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है तो आप, मैं आपको बता देता हूं, 10 साल रात दिन काम करेंगे तभी खड़ा होगा। बोले जो भी है कर लो और इसको फाउंडेशन करके फिर बाद में छोड़ के जाओ। तो अब इतने सारे

0: रंगकर्मी भी हैं, राजनेता भी हैं और मित्र भी हैं, ये सारे मेरे नाटक देखने वाले भी थे, तो सभी की ओर से चारों ओर से वो लगा कि आपको करना चाहिए। फिर हमने कहा कि चलो यार इसको दो साल के बाद प्रोजेक्ट को करते हैं, वह तीन साल के बाद फिल्म को, तो वो स्वीकारना पड़ा। और एक बार वो स्वीकारने के बाद 2003 में मैंने उसको स्वीकारा, 13 कब आया मुझे समझ में नहीं आया।
1: जो दो तीन साल
0: सोचा था। और रात दिन मैं सुबह 7:45 बजे पहुंचता था, रात को 12 बजे घर पहुंचता था।
1: अरे बाप रे।
0: पर चूंकि वो उतनी इन्वॉल्वमेंट से किया, इसलिए एक नेशनल लेवल का 10 साल में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, और जहां पर लोग पढ़ने के लिए ज्यादा पसंद करते थे बजाय के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाए। तो जो सारा का सारा फ्लो था वो वहां से मुंबई की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई में जाना है सबको, मतलब ज्यादातर लोगों को, अपवाद तो बहुत है। तो फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल रही है।
1: जी जी।
0: तो ये भी जिसको एकेडमिक्स में जाना है उसके लिए ये भी और एक शॉर्टकट हो गया। और वो सारे लोगों को हम बुलाते थे जो बाहर जाके जिनके साथ इनको काम करना है, चाहे वो फिरोज अब्बास खान है, चाहे दिनेश ठाकुर है, चाहे रमेश तलवार है, एमएस सत्यू साहब है, जब्बार पटेल है, डॉक्टर लागू है, नीलू फुले जी हैं, विजया मेहता जी है, जितने भी मराठी हिंदी अंग्रेजी और परेश रावल जी है, नसीरुद्दीन शाह है, मैं ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं हमने जिनको बुलाया नहीं। तो एक तरीके का वो अड्डा बनते बनते वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया। वो भी एक अपने आप में एक यूनिक, यूनिवर्सिटी के पूरे प्रेशर में, सेटअप में वो खड़ा करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, बट आई एंजॉयड दैट ऑल्सो। और एक बहुत अच्छे, एक से एक बेहतर प्रोडक्शन भी हो गए। ये मध्यम व्यायोग तो उसी के लिए किया था। फिर ईडीपस किया, 2 मंजिला सेट लगा के। मेरे बाद और भी डायरेक्टर्स ने भी काम किया, विजय केंकरे ने किया, चंद्रकांत कुलकर्णी ने आके काम किया, पुरुषोत्तम बेर्डे ने किया, रंजीत कपूर ने आके काम किया, अंकुर जी ने आके काम किया, इतने सारे। और ये पहला विभाग है पूरे देश में यूनिवर्सिटी के मर्यादा में कि पहले साल हमने अपना नेशनल फेस्टिवल शुरू किया।
1: वाह वाह वाह।
0: राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव।
1: जी।
0: इसमें ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है कि जिसको हमने इनवाइट नहीं किया। पूरे हर एक, रतन थियाम मणिपुर से 2 बार आ गए, बंसी कौल आ गए, उसके बाद रैना साहब आ गए, उसके बाद रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आ गए, मतलब कोई भी, साउथ का बी जयश्री आ गई, अहमदाबाद से फलाना आ गया, सौम्या जोशी आ गए, इतने सारे पुराने भी डायरेक्टर्स और नए भी डायरेक्टर्स, सबको वहां लाया। ऐसे प्रोडक्शन हम चुन चुन के लाते थे कि जो अदरवाइज मुंबई में देखने सुनने को मिलेंगे नहीं, तो वो लंबी लाइन में खड़े होकर लोग अंदर जाते थे और वो माहौल भी देखा हमने। और सारा का सारा विद्यार्थी ऑर्गेनाइज करते थे, हम सिर्फ उसके पीछे खड़े रहते थे।
1: वाह वाह।
0: कि अंत में अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल लोग बनाने का काम वो यज्ञ जैसा हो रहा था। तो वो भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि मिसाल है, जो माहौल दिल्ली में मैं ले गया वो यहीं बनाया हुआ था।
1: जी।
0: क्या करने से बच्चे के जीवन में परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा वहां तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एड ऑन क्या करते हैं, यहां पर क्या कम पड़ा था, क्या ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि वो सारा जो एकेडमिक्स है उससे मेरी कहीं दोस्ती नहीं टूटी, जो प्रैक्टिसेस है उसमें मेरी कोई दोस्ती नहीं टूटी, तीसरा है मेरा रिसर्च का स्वभाव अभी तक वैसा ही है, चौथा है दुनिया भर का जो हो रहा है उसका कॉग्निजेंस रखना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक अपने आप में दिलचस्प बातें थी। मुंबई में जो जो भी आता था, जो किसी भी देश से आए, वो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में आए बिना जा नहीं सकता था।
1: जी जी।
0: ऐसा कुछ हमने, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे अमेरिकन सेंटर हो, चाहे जर्मन सेंटर हो, रशियन सेंटर हो, छोटे से छोटे देश का कोई भी रंगकर्मी आता था वो मुझे पता चलता था, क्योंकि वो नेटवर्क था, दोस्ती थी इन लोगों से, जो दिल्ली में भी बहुत काम आया मुझे बाद में आगे चल के। तो इसकी वजह से ये भी खड़ा हो गया। और अभी तक मैं जब तक था, मुझे लगता है 8 बार राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव हुआ, 8 या 9 बार।
1: जी।
0: तो उसमें भी हमारे बच्चों को दुनिया भर का बेहतर नाटक देखने को मिलता था, कोई नॉर्वे से आ रहा है, एक कोई आदिवासी ग्रुप थिएटर लेके उसका परफॉर्मेंस हम वहां करते थे।
1: वाह,
0: मतलब ऐसा नहीं है, कहीं से भी कोई भी आए और हमको पता चले कि हम उसको हाथ जोड़ के पकड़ के लाते थे और जितना भी संभव है हमारी अपनी इसमें सुविधा देना उतना करते थे, क्योंकि एक क्लोज थिएटर कुसुमाग्रज जो भाषा सभागृह है वो हमारे हाथ में था और एक ओपन एयर थिएटर हमने हमारे लिए हमारे इंजीनियर से कंस

0: करवा लिया था, उससे बेहतर थिएटर तो आज इस देश में कहीं नहीं है। ओपन एयर थिएटर में जाइए, माहौल है कि यहाँ बैठे बैठे आप करियों का आस्वाद ले सकते हो।
1: सही है, सही है। तो सिनेमा के जो आपके सपने हैं, आपकी धारा को,
0: तो इसीलिए सिनेमा, मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि मैं सिनेमा नहीं करूंगा। मुझे लगा था कि यहाँ पर एक स्पेस बननी चाहिए, आपकी जगह बननी चाहिए, और ये मेरा स्वभाव नहीं कि इसको छोड़ के उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उसको ताड़ो। मुझे लगा कि ये जहां काम करना है, जहां आनंद आ रहा है, और हर बार आप अपनी डिस्कवरी कुछ कर रहे हो। मतलब अभी तक मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया कि मैं अपने आप को रिपीट कर पाऊं। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नया नाटक करना चाहिए।
1: जी जी,
0: सिनेमा का भी सपने आते हैं कि मुझे ऐसा सिनेमा करना है कि जैसे पहले नाटक ने देश को हिला दिया, वैसे मैं कम से कम पहले फिल्म में दुनिया को हिला दूं। ऐसा कोई कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई कहने का तरीका ढूंढ रहा हूं, ताकि वो माध्यम में जाने के बाद लोगों को ये ना बुलाए मेरा कुछ देखो।
1: जी जी जी,
0: वो अपने आप इतना बोलना चाहिए कि यार आई शुड गो एंड सी दैट फिल्म।
1: तब तक इस धारा को ऋत्विक आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ऋत्विक के दो या तीन सिनेमा आ गए हैं, और तीसरा ही पिछले हफ्ते में उसके सिनेमा का फिल्म फेस्टिवल में एक स्क्रीनिंग हुआ है।
1: जी जी,
0: उसके पहले उसका ड्राई डे एक सिनेमा रिलीज हो गया है। अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेमा है जो उतना अंडरलाइन होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया, पर आगे चलकर होगा, सरगम नाम का सिनेमा है और बहुत यूनिक स्टोरी पे बनाया है। और उसका खासियत यह है कि गिरीश कारनाड जी का आखिरी सिनेमा है, जिसमें गिरीश कारनाड जी ने स्वतः काम किया है।
1: जी,
0: और वो मराठी सिनेमा है, और वो बहुत अच्छा रोल किया है गिरीश कारनाड जी ने, और ऋत्विक और गिरीश कारनाड जी आमने सामने हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: ऋत्विक प्रमुख भूमिका में, नायक की भूमिका में है, और वो ऐसा लगता है खलनायक है लेकिन वो है नहीं।
1: जी,
0: तो ये सारा जो मुझे लग रहा है कि ये जो धरोहर है या ये जो थ्रेड्स है या जर्नी है, वो तो आगे चलती रहेगी। ऋत्विक अपने तरीके से वो थिएटर भी कर रहा है और सिनेमा में भी काम कर रहा है, और भी कुछ वो करना चाह रहा है, जो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है।
1: अच्छा क्या
0: तो
1: बात है,
0: ये तो चलते रहेगा सिलसिला, पर सिनेमा भी करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव रेजिस्टेंस अबाउट सिनेमा, आई एम वेरी हैप्पी विथ सम एक्सप्रेशंस। सिनेमा में भी लोग बहुत यूनिक काम कर रहे हैं, और भारतीय सिनेमा भी कर रहे हैं
1: जी,
0: पर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है।
1: जी,
0: मेन स्ट्रीम जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा है उसमें बहुत रेयरली आपको लगता है कि यार ये ठीक है।
1: जी,
0: इसलिए मैं सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो वो इसीलिए हूँ कि मैं सिनेमा देखते रहता हूँ बीच में।
1: हर तरह की सिनेमा,
0: हर तरह का सिनेमा देख।
1: जी, वामन केंद्री जी, आपकी तमाम अगली अभिव्यक्तियों का हमें इंतजार रहेगा, और इस लंबी बातचीत में बहुत आनंद आया। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जिनमें अगली बार की बातचीत की गुंजाइश बनी रहे।
0: जी जी जी,
1: मुझे लगता है इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनुस जी और विविध भारती का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना सारा गपशप करवाने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का चौथा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: उजाले।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

रात के शांत आकाश में टंगा चांद किसी प्रेम पत्र की तरह लगता है, जिसे प्रकृति ने हर प्रेमी के नाम लिखा हो। उसकी दूध या रोशनी मन की बेचैन लहरों को सहला देती है। जब कोई अपने प्यार को याद करता है तो सबसे पहले उसकी निगाहें चांद की ओर उठती हैं, मानो चांद दूर बैठे उसके प्यार तक उसके दिल का हाल पहुंचा देगा।

जब ये रात अपने आंचल में सितारों के असंख्य दीपक सजा लेती है और चांद चुपके से आसमान की चौखट पर आ बैठता है, तो उसकी चांदनी इस जमी के साथ साथ प्रेम करने वालों के दिलों पर भी उतरती है। वो हर धड़कन से कहती है, सच्चा प्रेम आकाश की तरह असीम है और चांद की तरह हर अंधेरी रात में झिलमिलाती रोशनी का समंदर बनकर लौट आता है।

ये जो रात का रोशन चांद है ना, इसने ना जाने कितनी मोहब्बतों को जन्म लेते देखा है, कितनी ही आंखों में सपने सजाए हैं, कितनी ही दुआओं को अपने उजाले में पनाह दी है। वो जानता है कि प्रेम शब्दों से नहीं, खामोशियों से लिखा जाता है, और चांदनी वही खामोशी है जो दिल से दिल तक बिना आवाज पहुंच जाया करती है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। कभी ये चांद किसी के चेहरे का रूप बन जाता है तो कभी किसी की याद का, कभी वो मिलन की रात का गवाह होता है तो कभी जुदाई की लंबी रातों का हमसफर। मगर उसकी चांदनी हर बार यही कहती है, मोहब्बत दूरियों से नहीं हारती, वो तो इंतजार से और भी गहरी हो जाती है।

चांद की तरह है, वो हर दिन एक सा नहीं रहता। कभी पूर्णिमा की उजली मुस्कान बनकर जीवन को आलोकित कर देता है, तो कभी अमावस्या की खामोशी में भीतर ही भीतर धड़कता रहता है। पर जैसे चांद बादलों भरी रात में भी कभी खोता नहीं, बस कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाता है, वैसे ही सच्चा प्रेम भी परिस्थितियों के बादलों में छिप सकता है लेकिन मिटता कभी नहीं।

कहते हैं इश्क अगर सच्चा हो तो प्रेमियों की आंखों में चांद उतर आता है और चांदनी उनकी मुस्कान में खिल उठती है। मोहब्बत अगर चांद है तो विश्वास उसकी चांदनी है। चांद कभी कभी बादलों में छिप जाता है मगर चांदनी का एहसास हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल के आंगन को रोशन करता रहता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड

0: हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। इनकी कीमत करीब 1,89,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्य निकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंकर प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वे बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। A major rescue operation is underway after a multi-story building housing a student paying guest PG accommodation collapsed in Satya Niketan area of Delhi this afternoon. According to the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS in New Delhi, 4 persons were brought to the trauma center for treatment. Of them, 1 person was brought dead, 2 persons are in critical condition and 1 was discharged. Meanwhile, the Delhi police has said that 6 persons have been rescued so far and shifted to hospitals. Several people are feared trapped. The police said during the local inquiry it was revealed that the building was 40 to 50 years old and some repair work was underway in the basement of the building when the incident happened. The Delhi Fire Service has deployed 18 fire tenders for the relief and rescue work at the location. The area where the incident occurred is close to the heart of Delhi University.

0: समर्थनम् संप्रभुता प्रादेशिक अखंडतयोः अक्षुण्णतां रेखांकयत् भारतेन प्रोक्तं यत् जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत्य समस्त क्षेत्रस्य प्रदर्शनं केवलम् आधिकारिक मानचित्रानुगुणम् एव स्वीकार्यम्। मध्यप्रदेशस्य सागर मण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन दश जनाः मृत्युमुपगताः, पञ्चत्रिंशत् जनाः चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, कतिपय संदिग्धाः आरक्षीदलेन गृहीताः। अपि च चीनदेशस्य शेंजेन नगरे आयोजितायां बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां चाइना मास्टर्स पुरुष युगल प्रतियोगितायाः चषकं भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी युगलेन विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवा राज्ये वार्ताहर सम्मेलने ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतम वर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं कर्तुं रूपरेखां प्राकटयत्। तेन मादक पदार्थ विरोधी त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अभियानस्य आह्वानं कृतम्। गृहमन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनेन शत मादक संजालानि खण्डयितुं, शत अपराधिनः भारतम् आनेतुं तथा शत अवैधिक प्रयोगशालाः विनष्टं कर्तुं उच्च लक्ष्यं विनिर्धारितम्। नवदेहल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स महाविद्यालयस्य शत वर्षे सम्पूर्णे सति आयोजिते शताब्दी समारोहे प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन जेन्जी युवा उद्यमिनः प्रोत्साहयितुं उच्च लक्ष्य धारणस्य मंत्रो दत्तः। तेन प्रोदीरितं यत् भारतीय मेधा जागतिक व्यापार जगत् नूतनां दिशं दर्शयति, एआई प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन च देशः आर्थिक समृद्धिं प्राप्नोति।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: आर्थिक दृढ़ताम प्रतिपादयन प्रधानमंत्री अवोचत यत् पश्चिम एशिया संकटावधौ अपि भारतेन 7.8% यावत् अभूतपूर्व समृद्धि मानमर्जितम्। अनेन भारतस्य आंतरिक शक्तेः परिचयः लभ्यते। तेन प्रख्यापितं यत् वैश्विक संकटेषु भारतस्य दृढ़ नीति संचालनमद्य जागतिक स्तरे श्लाघनीयं वर्तते।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि मेक इन इंडिया अभियानम अभूतपूर्वम परिवर्तनम साधयतीति प्रधानमंत्री अवोचत। अनेन अभियानेन भारतमद्य प्रमुख निर्यातक राष्ट्रम अभवत्। असौ न्यगादीत यत् स्मार्टफोन क्षेत्रे 2.5 लाख कोटि रूप्यकाणां निर्यातं सम्प्राप्तम्, रक्षा उत्पादने च 2 लाख कोटि रूप्यकाणां नूतन कीर्तिमानं स्थापितम्। भारतस्य भौगोलिक अखण्डतां संप्रभुतां रेखांकयन् विदेश मन्त्रालयः संयुक्त राष्ट्रस्य मानचित्र प्रस्तावे स्वपक्षम् उपस्थापितवान्। मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन प्रोक्तं यत् भारतेन यूएन प्रस्तावस्य समर्थनं कुर्वता स्पष्टं कृतं यत् भारतस्य राष्ट्रीय सीमासु किमपि भ्रामकं प्रदर्शनम् असह्यमस्ति। तेन प्रोक्तं यत् अयं प्रस्तावः कस्यापि देशस्य सीमायाः अनुमोदनं नैव करोति, अपि तु केवलं समान क्षेत्रफल प्रदर्शनस्य नीतिं पोषयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति।

0: तण छान ना। आज आपल्या कार्यक्रमात आले आहेत काही खास मित्र, भेटूया त्यांना। आपल्या कार्यक्रमात आज सहभागी झाले आहेत व्हिक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड तारदेव मुंबई इथले विद्यार्थी। आज आपल्या समोर ते विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम सादर करणार आहेत, ऐकूया तर।
1: नमस्ते फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे माइक के पीछे ये नई आवाज किसकी है।
2: हम आपको बता दें हम कौन है। हम है द विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड के स्टूडेंट्स। आज के आपके आरजे होस्ट और दोस्त। मेरा नाम है निर्वैर सिंह।
1: मेरा नाम है श्लोक थोरा। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां होगी ढेर सारी बातें, थोड़ी सी जानकारी, मजेदार किस्से और ऐसी परफॉर्मेंसेस जो आपके दिलों को छू जाएगी।
2: तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे जगह की जहां से हमारे सपनों की शुरुआत होती है। वह है हमारा अपना स्कूल। हमारे स्कूल के बारे में जानकारी देने आ रहे हैं मेरे दोस्त मुबश्शिर सगरी।
3: नमस्कार, क्या आपको पता है कि 2027 में हमारे स्कूल को 125 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। हमारा स्कूल 14 फरवरी 1902 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये कैसे हुआ था तो 22 जनवरी 1901 को जब क्वीन विक्टोरिया जी की डेथ हुई थी, उसके बाद हमारे मुंबई के गवर्नर और कुछ नामी लोगों ने मिलकर एक विक्टोरिया मेमोरियल फंड रेजिंग किया था। तो उन्होंने विचार किया कि हम इस फंड का कोई अच्छी चीज में इस्तेमाल करेंगे। तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम एक ऐसा स्कूल बनाएंगे विजुअली इम्पैर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो उनके स्टडीज के लिए काम आएगा। तभी 14 फरवरी 1902 में द विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड इस स्कूल की स्थापना हुई थी और ये इंडिया में पहला विजुअल इम्पैर्ड स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बनाया गया था। अभी मैं आपको हमारे स्कूल के बारे में बताता हूँ कि हमारा स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक मुफ्त शिक्षा और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सिखाया जाता है। जैसे कि हमारे स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें अलग अलग यूनिट्स है, टेलरिंग यूनिट, पेपर बैग मेकिंग यूनिट, और हमारे स्कूल में मसाज सेंटर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब जैसी भी चीज़ें हैं। कंप्यूटर लैब में हमें जॉज और एनवीडीए की मदद से पूरा कंप्यूटर सिखाया जाता है और उसी की मदद से एमएससीआईटी जैसी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत आसानी से क्रैक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा स्कूल एक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्कूल है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रांत से और अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ाई करने और अलग अलग चीजें सीखने के लिए आते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा स्कूल महज एक संस्थान नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा अभिमान है और हमारे भारत की एकता की मिसाल है। तो निर्वैर, मुझे आपसे एक सवाल था, स्कूल क्या ईंट पत्थर की दीवारों से ही बनता है?
2: नहीं श्लोक, जैसे अगर घर में माता पिता ना हो तो घर घर नहीं लगता, मंदिर में अगर भगवान ना हो तो मंदिर मंदिर नहीं लगता, ठीक वैसे ही स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर और चार दीवारों का नहीं होता। अगर उस स्कूल में विद्यार्थी और शिक्षक ना हो तो वो स्कूल स्कूल नहीं लगता।
1: सही कहा निर्वैर, हम हमेशा कहते हैं गुरुओं ने ये किया, गुरुओं ने वो किया, लेकिन कौन होते हैं ये गुरु, उनका क्या महत्व होता है हमारे जीवन में? इसी के ऊपर अपने विचार रखने के लिए हमारे मित्र शमशुद्दीन शेख आ रहे हैं।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं शमशुद्दीन, VMSB का स्टूडेंट। आज मैं सभी से अपनी दिल की बात व्यक्त करना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके वजह से हमारा आज और कल बनता है, यानी हमारे प्यारे टीचर्स, हमारे गुरु। हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति और एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्मदिन है। उन्होंने कहा था कि देश के सबसे बेहतरीन दिमाग टीचर्स के पास होते हैं। भारत में सदियों से गुरु

0: शिष्य परंपरा का पालन किया जा रहा है, इसीलिए हम यह कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ यह होता है कि हमारे जीवन के असली कोच मार्गदर्शक सहायक और प्रशिक्षक हमारे गुरु ही होते हैं। जीवन में हमारे सबसे पहले गुरु हमारी माँ होती है जो हमें बोलना और चलना सिखाते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे गुरु जो हमें दुनिया का सामना करना सिखाते हैं। जिंदगी के पहले कदम से लेकर सफलता के शिखर तक हमारे जिंदगी को बनाने और संवारने में इन दोनों का बहुत अहम रोल होता है। गुरु सिर्फ किताबों के लेसन्स नहीं सिखाते बल्कि वो हमें हमारी जिंदगी जीना सिखाते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता है तब एक गुरु ही होते हैं जो हमें आकर कहते हैं कि आप कर सकते हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हमें सही रास्ता दिखाना, सही और गलत में फर्क समझाना और हमारे गिरने के बाद दोबारा खड़े रहने का साहस देना, यह केवल एक सच्चे गुरु की बदौलत ही हो पाता है। लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया में जब हम सबके हाथ में स्मार्टफोन्स है, AI टूल्स सेकेंड्स में मैथ्स के सॉल्यूशंस दे देते हैं, अक्सर यह देखकर हमें लगता है कि क्या AI टीचर को रिप्लेस कर सकते हैं। एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। AI एक पावरफुल टूल है जो हमें इंफॉर्मेशन तो दे सकता है लेकिन विजडम नहीं। वो हमें एक एल्गोरिदम का फॉर्मूला तो सिखा सकता है मगर हम एग्जाम के स्ट्रेस से डर रहे हो तो एक सॉफ्टवेयर हमारे कंधे पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि डरो नहीं मैं हूँ। एम्पैथी पेशेंस और इमोशनल कनेक्शन किसी कोड से नहीं बनता। AI आंसर्स तो दे सकता है मगर इंस्पिरेशन सिर्फ हमारे टीचर्स दे सकते हैं। अंत में मैं इंडिया के सभी स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे सभी टीचर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू हमारे ऊपर भरोसा करने के लिए, हमारी नादानियों को माफ करने के लिए और हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। आप है तभी हम है। जय हिंद।
1: वाह क्या बात कही है शमशुद्दीन ने। गुरुओं का उन्होंने महत्व भी बताया और आज के दौर के AI के बारे में भी बात हो गई। आइए अब हम गुरुओं को हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे हमारे गुरु कभी नहीं भुला पाएंगे।
2: मुझे तो पूरा यकीन है निर्वैर, हमारे टीचर्स को ये भेंट हमेशा याद रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं एक गीत।

0: धड़कन मैं दिल।
1: अंधेरी राहों में ज्ञान के दीप जलाते हैं, अंधेरी राहों में ज्ञान के दीप जलाते हैं, हमारे सपनों को एक नई दिशा दिखाते हैं, खुद पीछे रहकर हमें आगे बढ़ाते हैं, इसलिए शिक्षक हमारे जीवन के शिल्पकार कहलाते हैं।
2: वाह, क्या बात कही है। वैसे श्लोक, हमारे स्कूल में एकेडमिक ही नहीं स्पोर्ट्स भी नेक्स्ट लेवल होता है।
1: हाँ निर्वैर, सही बात है। अभी तो पिछले साल हमने नेशनल गोलबॉल चैंपियनशिप जीती थी।
2: हाँ, इट इज ग्रेट अचीवमेंट। तो आइए हम अभी गोलबॉल के कैप्टन प्रतीक से इस बारे में हम जानकारी लेते हैं।
3: नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमारे दोस्तों ने बताया आपको कि हम लोग लास्ट ईयर गोलबॉल नेशनल चैंपियनशिप के विनर थे। तो लास्ट ईयर तो हम थे, इस ईयर भी हमने हमारे स्कूल ने अपने स्टेट के तरफ से गोलबॉल नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। तो मैं वो तो आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको गोलबॉल ये खेल से परिचित करा देता हूँ। तो जो गोलबॉल जो खेल है, ये बस दृष्टिबाधित जनों के लिए बनाया गया है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू में लड़े हुए बहुत से आर्मी पर्सन्स ने अपने आंखों की रोशनी खो दी थी। उनको अपना उनका एक्सरसाइज होने के लिए और अपना फिटनेस मेंटेन रखने के लिए, उधर के एक आर्मी थे जर्मनी के जिनका नाम था हैंस लॉरेंस, उन्होंने ये गेम बनाया था। तो इसमें एक टीम में 6 जन होते हैं, जिनमें से 3 जन खेलते हैं और 3 जन एक्स्ट्रा होते हैं। वो इसमें गेम बहुत सिंपल है, बॉल पकड़ के थ्रो करना होता है, सामने वाले टीम को डिफेंड करना होता है और फिर से उनको थ्रो करना होता है। 24 मिनट्स का गेम होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसने गोल किया वो विनर होता है। इसका ग्राउंड 18 मीटर लेंथ होता है ग्राउंड का और 9 मीटर ब्रेथ होता है। तो लास्ट ईयर महाराष्ट्र के नेशनल टीम में हमारे स्कूल के 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो हम लोग महाराष्ट्र को प्रेजेंट करने के लिए MP ग्वालियर गए थे, उधर पे 2025 में फर्स्ट जूनियर यूथ गोलबॉल नेशनल चैंपियनशिप था, जिधर पे हमारे महाराष्ट्र की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और इस बार गुजरात नडियार में सेकेंड जूनियर यूथ गोलबॉल नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें हमारे स्कूल से 2 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे। हमने रिप्रेजेंट किया महाराष्ट्र की टीम को और हमने अपना पूरा ट्राई किया।
1: इस खेल के अलावा और कुछ अलग खेल खेलते हो?
3: हमारे स्कूल में बहुत से खेल सिखाए जाते हैं। मैं गोलबॉल खेलता हूँ, गोलबॉल के साथ में मलखम भी खेलता हूँ। मलखम मेन 2 शब्दों से बना है, एक होता है मल और एक होता है खम। मल मतलब कुश्ती और खम मतलब खम्बा जो हम जानते हैं। तो जो मलखम है वो महाराष्ट्र में ही बना है, दादा बाळम भट्ट देवधर मलखम के निर्माता है। तो बहुत समय पहले 2 पहलवान थे, वो दोनों भाई थे पहलवान, जिनका नाम था अली और गुलाम। तो वो उस समय के महाराष्ट्र के सबसे अच्छे पहलवान थे। तो उन्होंने दादा बाळम भट्ट देवधर जी को चैलेंज किया था। फर्स्ट मैच में उन्होंने बाळम भट्ट दादा को हरा दिया, क्योंकि उन जो गुलाम और अली थे उनके पास अच्छी स्ट्रेंथ थी, अच्छी हाइट थी। दादा बाळम भट्ट का इतने ताकतवर लोगों के साथ कभी भी मैच नहीं हुआ था। तो फिर प्रैक्टिस के लिए उन्होंने एक खम्बे पर कुश्ती करना स्टार्ट किया, मतलब एक खम्बा बनाया जिसके ऊपर वो चढ़ते थे, उसके ऊपर ही कुश्ती का प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि खम्बा तो कभी गिरेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं, तो फिर वो अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कर सकते थे। तब से लोगों ने मलखम करना स्टार्ट किया। मलखम एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको हम कम समय में हमारे पूरे बॉडी का व्यायाम हो सकता है, उसे स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ, सब तरह का डेवलपमेंट हम मलखम से कर सकते हैं।
2: तो आज हमने जाना कि गोल बॉल और मलखम यह सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प और आत्मविश्वास है।

0: अरे श्लोक, आप क्या कर रहे हो?
1: अरे मुझे गाना सुनने का बहुत मन कर रहा है।
0: अच्छा, तो आपको म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है तो क्यों ना हम हमारे VMSB के टैलेंटेड म्यूजिशियन को यहाँ बुलाएं, क्यों ना एक मस्त जुगलबंदी हो जाए।
1: हाँ हो जाए,
0: तो चलो लेट्स जैम।

0: वाह मजा ही आ गया, क्या कमाल की जुगलबंदी थी।
1: सच में दिल खुश कर दिया।
0: लेकिन निर्वैर, दिल से जुड़ी हुई एक खास बात कहे बिना हम कैसे जा सकते हैं?
1: सही कहा, जब इमारतों, सपनों और जज्बे की बात हो रही है तो हम हमारी मुंबई को याद ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता।
0: ये शहर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतों, सड़कों और ट्रैफिक का नाम नहीं है दोस्तों, ये शहर है सपनों का, मेहनत का, संघर्ष का और कभी ना टूटने वाले जज्बे का।
1: जहां सुबह नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम कहती है चलते रहो रुकना नहीं। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है हमारे प्यारी मुंबई की, जो हर किसी को अपने दिल में जगह देती है।
0: इसीलिए तो हर मुंबई करके दिल से यही आवाज आती है, मुंबई है तो जान है, मुंबई है तो जहान है, मुंबई है तो हमारा आसमान है।
1: तो चलिए इस खूबसूरत शहर के नाम करते हैं अगला पल और सुनते हैं एक ऐसा एहसास जो हर मुंबई करके दिल के करीब है।
0: तो अपने रेडियो की आवाज बढ़ा लीजिए हमारे साथ, ये है हमारी मुंबई और ये है हमारी आवाज।

0: श्रोते हो, या गीता बरोबरच हिंदी सुगम संगीताचा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आपण आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून ऐकलात. रात्रीचे 8:45 होत आहेत. दिल्ली केंद्रावरून समाचार संध्या हे हिंदी बातमीपत्र, 9 News@9 हे इंग्रजी बातमीपत्र, 9:15 स्पॉटलाईट आणि 9:30 ऐकू शकणार आहात रूपक ओका अखिल भारतीय कार्यक्रम. दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करू. ठीक 10:00 अखिल भारतीय संगीत का रविवासरीय कार्यक्रम ऐकू शकणार आहात. कलाकार NR प्रशांत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी. मुख्य समाचार. दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए. अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी. गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की. मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया. सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया. विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया. और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता. और अब समाचार विस्तार से. नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का काम चल रहा था. बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई. PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है. हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए. दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ.
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी. NDRF के महानिरीक्षक NS बुंदेला ने बताया कि NDRF की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं.
3: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपनी कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं. हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं. अभी तक 4 लोगों को NDRF की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है. सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
1: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
5: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is

0: our own brain.
1: Drugs should not determine what we should think.
0: Our brain should determine what we should think and act.
1: That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
2: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
6: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी

0: में अगले चार दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centers, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China Masters in Shenzhen. And now the news in detail. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said, relief and rescue operations are continuing on a war footing. Ms. Gupta said, those found responsible for the incident will not be spared. Whether it is the building owner or any official found responsible, guilty will not be spared. It was an old building and was undergoing construction and renovation, and excavation in the basement reportedly caused a pillar to shift, leading to the collapse. The building was being used as a paying guest accommodation with children inside. All agencies are working round the clock with saving lives a top priority. The rescue operation will continue with full resources and all officials are present at the site. Later, the Chief Minister visited All India Institute of Medical Sciences AIIMS Trauma Center to meet the individuals undergoing treatment at the hospital. She instructed the team of doctors to ensure every necessary medical assistance. Ms. Gupta said the Delhi government is also in contact with the families of victims. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Mr. Sandhu directed all concerned

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे रूपक राखी गढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख है डॉक्टर अप्पू सहारण का, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार।
1: आज की यात्रा किसी सड़क या ट्रेन की नहीं, यह यात्रा है समय की रेखा पर पीछे लौटने की। हमारी आज की आधुनिक दुनिया से मिलकर हम पहुंच रहे हैं लगभग 7000 वर्ष पीछे। हरियाणा की हांसी जिले की उस पावन धरा के गर्भ में दबा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशाल सुनियोजित महानगर। पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, वैज्ञानिक जल निकासी, कुएं, दस्तकार, व्यापारी और कृषि पर आधारित एक समृद्ध समाज, यही पहचान है राखी गढ़ी की।
2: हजारों वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में छिपा इतना बड़ा महानगर आखिर निरंतर पुरातात्विक साधना का।
1: पुरातत्वविद व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे अमर सिंह ने कई वर्षों तक पढ़ाया है। वे समय समय पर छात्रों को राखी गढ़ी में हो रहे उत्खनन कार्यों को दिखाने के लिए ले जाते रहे। वे बताते हैं,
3: जहाँ तक राखी गढ़ी के प्रास्थल की खोज का प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार झज्जर गुरुकुल के संस्थापक व प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता आचार्य भगवान देव, जिन्हें स्वामी उमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1960 के दशक के प्रारंभ में राखी गढ़ी पुरास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनको यहाँ से कुछ प्राचीन बर्तन तथा वस्तुएं मिली, लेकिन वह इन वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व को स्वयं नहीं समझ पाए। उन्होंने ये अवशेष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरज भान को दिखाए। इसके पश्चात डॉक्टर सूरज भान ने 1963 में राखी गढ़ी का दौरा किया और वहाँ से प्राप्त अवशेषों की पहचान करके आधिकारिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष भारत की प्राचीन सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। उन्होंने राखी गढ़ी के महत्व को समझकर आसपास के क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य अनेक ऐसे ही पुरास्थल प्रकाश में आए। राखी गढ़ी की खोज ने सिंधु सभ्यता के बारे में प्रचलित इस धारणा को ही बदल दिया कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थी, बल्कि ये पुष्ट कर दिया कि वह भारत में सरस्वती नदी तथा इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में भी ये फली फूली। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है। अंततः 1997-98 के सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ निरंतर 3 सत्रों तक उत्खनन किया। उत्खननों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेष मिले। 2011 से

0: कोला के बीच पुणे के डेक्कन कॉलेज के तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेता डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन किए गए। टीला संख्या 7 से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला, जिसमें नर और मादा मानव कंकाल मिले। 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। अभी भी 2025-26 के सत्र में यहाँ पर उत्खनन शाखा नोएडा 2 के मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
1: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखीगढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृषद्वती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखीगढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का

0: अभी भी 2025-26 के सत्र में यहाँ पर उत्खनन शाखा नोएडा 2 के मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
1: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखीगढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृषद्वती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखीगढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि
2: दृषद्वती नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, जिसमें सरस्वती उत्तर की ओर तथा दृषद्वती दक्षिण की ओर बहती थी।
3: ये एक घग्गर की तरह एक सहायक नदी थी दृषद्वती, जो आपके शिवालिक से निकल के और फिर आगे चल के ये करनाल और पानीपत के बीच से होते हुए और कई तीर्थ, महाभारत में बहुत तीर्थों का स्थान का धाम है, तो इस सफीदों सप्त देवी और सर्व दमन के पास जाती थी। फिर पश्चिम को मुड़ जाती थी और इसके पास अश्विन वराह जीव और राम राय, ये पवित्र तीर्थ स्थान थे और राम राय में इसके चार द्वार थे, उसमें राम राय था और राम राय के पास आपका राखीगढ़ी बसा हुआ है। और सरस्वती से मैंने एक संबंध बता दिया आपको, और इसकी जो धारा है वो आज भी आसन वराह जीव राम राय आप होते हुए हांसी हिसार सुपार मातर श्याम भादरा रावस्तर सोथी होते हुए ये सरस्वती से संगम करती है सूरतगढ़ के पास, सरस्वती इस पर संबंध है।
1: ऋग्वेद की ऋचाओं में इन नदियों किनारे भरतवंशी राजाओं द्वारा यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट मानते हैं कि सरस्वती के दक्षिण में तथा दृषद्वती के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है।
3: नदी के किनारे है, अब वो लुप्त तो प्राय हो गई है, लेकिन एक जमाने में वो शिवालिक से लेके तो जहाँ तक सरस्वती संगम होता था, ये सूरतगढ़ के पास एक प्राचीन स्थान है रंग महल के पास, इसका मेल होता था सरस्वती का, इसका इतना महत्व था। मैं आपको ऋग्वेद की बात बताता हूँ कि उसमें एक श्लोक आता है कि दृषद्वत्याम मानुष आपयायाम सरस्वत्याम रेव दग्नि दिधि ही, इसका मतलब है कि दृषद्वती आपया और सरस्वती इतनी पवित्र नदियां थी कि इसके किनारे भरत वंश के राजकुमार देव सुरस और देव वाप इन तीनों नदियों के किनारे यज्ञ किए। हो सकता है एक स्थान उसका राखीगढ़ी रहा।
1: राखीगढ़ी लगभग 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 9 टीलों का समूह है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल के साथ साथ पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य भी मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, नालियां और अग्निवेदियां यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का समाज प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी एवं वर्तमान उत्खननकर्ता मनोज सक्सेना ने बताया,
4: राखीगढ़ी ग्राम दो गांव राखी खास और राखी शाहपुर को मिलाकर बना है। राखीगढ़ी के आसपास 9 टीले हैं जिनका विस्तार लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे विशाल नगरीय केंद्र बनाता है। राखीगढ़ी ग्राम टीला संख्या 4 और 5 पर बसा है, तो यहाँ उत्खनन का कार्य संभव नहीं है, परंतु टीला संख्या 5 पर कुछ क्षेत्र में हमें कार्य करने की जगह मिली और जहाँ पर हम लोगों ने इस वर्ष के जो एक्सकेवेशन है उसमें हमने कुछ ट्रेंच वहाँ लगाए और हमें कुछ घरेलू संरचनाओं की कच्ची मिट्टी की ईंटों के से निर्मित है वो प्राप्त हुई है। टीला संख्या 1 से 9 तक के अध्ययन से हमें पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा काल के निरंतर सांस्कृतिक विकास और अधिवास के अनुक्रम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से उत्खनन में सुविकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सड़कों को समकोण पर काटना, जल निकासी की उचित व्यवस्था, पगी ईंटों की नालियां, कच्ची मिट्टी की ईंटों या सन ड्राइड ब्रिक्स का उपयोग घरेलू संरचनाओं में मिला है और 4-2-1

0: के अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग मिला है। राखीगढ़ी की विशालता एवं विस्तार को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की पूर्वी राजधानी माना जा सकता है। टीला संख्या 2 और 7 के उत्खनन ने हमें सर्वाधिक आश्चर्य में डाला। टीला संख्या 2 से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों या सेमी प्रीशियस स्टोन्स के मनकों का प्रतिशत पूर्व के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक है।
1: राखीगढ़ी से कई हड़प्पाकालीन वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन के दौरान अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई जो इस सभ्यता के लोग अपने दिनचर्या में उपयोग करते थे। प्रोफेसर अमर सिंह बताते हैं,
2: चांदे और सोने के आभूषण, पतली मिट्टी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरे तथा मनके बनाने के केंद्र मिले हैं जो इसके विकसित शहरी रूप को दर्शाते हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण, चर्ट पत्थर से बनी ब्लेड्स, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के अनेक प्रकार के मनके, पतली मिट्टी से निर्मित मनके, चूड़ियां, पशु हनुमानों की मूर्तियां, खिलौना गाड़ियां आदि भी प्रमुख रूप से मिले।
1: राखीगढ़ी वासी मामूली वस्तुओं से लेकर लैपिस लाजुली पत्थर से बने श्रृंगार के कीमती आभूषणों का अक्सर प्रयोग किया करते थे।
0: यहाँ से हमें कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, जास्पर आदि के मनके, सोने के मनके, चर्ट के ब्लेड, टेराकोटा एवं शेल की बैंगल्स, अंजन सलाखा आदि के साथ साथ करीब करीब 2 मीटर मोटी दीवारों की घरेलू संरचनाएं भी प्राप्त हुई है। टीला संख्या 7 जो कि दफन स्थल या बरियल माउंड है, 7-8 मानव कंकाल मिले हैं जिसमें एक मानव कंकाल के पास से 17 सोने के मनके, 2 सोने के फाइल और 42 मृदभाण मिले हैं जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक समाधि परंपरा और आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं।
3: अब प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों में फैली अन्य सभ्यताओं के साथ मेलजोल होने के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। राखीगढ़ी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा और यहाँ से भी दूर दूर तक व्यापार किया जाता होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास पवार मानते हैं कि राखीगढ़ी के अन्य सभ्यताओं के साथ पारस्परिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे होंगे।
4: पुरातात्विक उत्खननों से अनेकों प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों के मनके अवशेष रूप में मिले हैं जिनका कच्चा माल राखीगढ़ी के आसपास नहीं मिला। ये कच्चा माल सुदूर हड़प्पा स्थलों तथा दूर विदेशी हड़प्पा पुरास्थलों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के रूप में शंख गुजरात से, तांबा राजस्थान में स्थित खेतरी की खानों से, राखीगढ़ी के उत्खननों में जो मानकीकृत बात बटकरे एवं मोरे मिली हैं, उससे यह साबित होता है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के नियम एक समान थे। विदेशी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप राखीगढ़ी का व्यापार क्षेत्र अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की खाड़ी तक भी था। वहां से कच्चे माल के रूप में अर्धकीमती पत्थर अवशेष रूप में मिलते हैं। इस प्रकार राखीगढ़ी पुरास्थल का व्यापारिक मेलजोल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक था।
1: अब सवाल उठता है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये लोग कहीं से आए होंगे या फिर यहीं के गांवों व नगरों के मूल निवासी रहे होंगे। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 से प्राचीन कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनका विस्तृत डीएनए अध्ययन व विश्लेषण किया है। एक महिला के प्राचीन कंकाल से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए अध्ययन में U2B2 माइटोकॉन्ड्रिया हैप्लोग्रुप मिला है। डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे का मानना है,
5: राखीगढ़ी में जो हड़प्पन कंकाल मिले हैं उनकी डेट लगभग 4,500 साल पुरानी है, तो उन लोगों का डीएनए सबसे प्रथम भारत में निकाला गया है। और इसके पहले हमको हड़प्पन लोग कौन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसमें मतभेद थे, कुछ लोग बोलते थे कि हड़प्पन लोग यहाँ के थे, कुछ लोग बोलते थे कि वो बाहर से मेसोपोटामिया से आए होंगे, उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया होगा ऐसा मानते थे। लेकिन इस डीएनए से जिसका रिजल्ट हमने एक दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है सेल, उसमें हम उसके रिजल्ट हमने पब्लिश किया है। और इसको एक दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स, उसने इसको अप्रूव किया है और

0: उन्होंने बोला कि 2019 में जो 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस हुए थे दुनिया में, उसमें राखी गढ़े का जिक्र उन्होंने किया है। इसका मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हड़प्पन लोगों का जो जीन्स थे, जो डीएनए था, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट था, जिसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन बोलते हैं। वो जीन्स था जिनकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। 12,000 साल के बाद इसमें धीरे धीरे म्यूटेशन शुरू हो गया और एक डिस्टिंक्ट जीन तैयार हो गया, उसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन जीन्स बोलते हैं। और वही जीन्स हड़प्पन लोगों में आए। और ये जो जीन्स है वो प्योरली इंडिजिनस लोगों के जीन्स है, यहाँ के लोगों के जीन्स है। तो इसे पता चलता है कि हड़प्पन लोग थे, यहाँ के थे, ये पता चलता है। उसके बाद हमने ये भी किया कि हमने मॉडर्न लोगों का सैंपल्स, लगभग 140 अलग अलग जो गुट है साउथ एशिया में, उनके सैंपल्स हमने 3,500 सैंपल्स, मॉडर्न लोगों के सैंपल्स हमने इकट्ठा किया और उसका हमने विश्लेषण करके उसको हम हड़प्पन जो सैंपल्स मिले थे राखीगढ़ी उससे हमने जोड़ा। उससे पता चलता कि साउथ एशिया के जो मेजर पॉपुलेशन है, हमको एक इंडिकेशन मिलता है अंडमान निकोबार से लेके लद्दाख कश्मीर तक और अफगानिस्तान से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, जो सब लोगों हड़प्पन लोगों के ही वंशज है, इसका एक प्रमाण मिलता है। वो लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या कास्ट फॉलो करते हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये पता चलता है या एक अंदाज लगता है कि अभी के जो मॉडर्न लोग है वो हड़प्पन लोगों के वंशज है। तो ये कंटिन्यूटी हमको दिखाई देते है और ये बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस हमको राखीगढ़ से मिला है।
1: राखीगढ़ी की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें शिकार, मछली पकड़ने और संग्रहण के जरिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जाता था। कृषि आधारित पशुओं के साथ साथ जंगली जानवरों के होने के भी प्रमाण मिले हैं।
2: खुराई से स्पष्ट होता है कि पालतू जानवर राखीगढ़ी में जीवन का केंद्र थे। महत्वपूर्ण पालतू जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर थे। इनका उपयोग आर्थिक और व्यवहारिक कार्यों के लिए भी होता था। गायों का उपयोग परिवहन के लिए और खेतों में काम करने के लिए किया जाता था। बैल और भैंस खेतों में हल चलाने और सामान ले जाने का कार्य करते थे। गाय और भैंस की गोबर भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। लोग इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में, फर्श और दीवारों पर प्लास्टर के लिए और ईंधन के रूप में करते थे। इन अनेक उपयोगों से पालतू जानवर केवल खाने का स्रोत ही नहीं रहते, वे खेती, निर्माण और घरेलू जीवन के लिए अनिवार्य थे। भेड़ और बकरी से मांस, दूध और ऊन या बाल प्राप्त होते थे। सुअर भी पाए गए हैं, कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। संभव है कि ये साथियों पहरेदारों के रूप में कार्य करते थे, शिकार में मदद करते थे और बस्ती के आसपास कचरा प्रबंधन में भी सहायक रहे होंगे। पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवरों का भी महत्वपूर्ण स्थान। विभिन्न प्रकार के हिरण और एंटीलोप की हड्डियां बताती हैं कि शिकार ने पशु संसाधनों को पूरा किया। शिकार से मांस, छाल और अन्य सामग्री मिलती थी और यह घरेलू पशुओं से मिलने वाले संसाधनों की कमी को पूरा करता था। राखीगढ़ी के निवासियों ने जली और छोटे जानवरों का भी उपयोग किया। मछली पकड़ने जल स्रोतों से संग्रहण का संकेत देती है, जिससे उनकी भोजन में प्रोटीन और विविधता आई। पक्षियों के अवशेष स्थानीय पक्षियों के शिकार या जाल में फंसाने का संकेत देते हैं। सरीसृप और शंखों के अवशेष नदियों, दलदली क्षेत्रों और संभवतः शंख शिल्प या व्यापार के उपयोग में की ओर भी इशारा करते हैं।
1: ये थे पंकज गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज, पुणे।
3: लगभग 4,000 साल पहले सरस्वती नदी सूखने लग गई होगी। धीरे धीरे समस्त सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में चहल पहल कम होती चली गई होगी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में इस सभ्यता के पतन के बारे में मतभेद हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं।
4: 8,000 से 5,000 ईसा पूर्व, जिसको आजकल कॉमन एरा कहते हैं, जलवायु के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होती थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत बारिश होती थी 8,000 से 3,000 ईसा पूर्व। उसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है, उस वक्त भी काफी बारिश थी। तो ये है कि सिंधु नदी अपने सारे सहायकों के साथ, पांच नदियां पंजाब की, सिंध और सरस्वती, ये बहुत जल का भंडार लेके पहाड़ों से जाके आगे जाके समुद्र में जाती थी। वह समय था जब आदमी ये बस्ती बना के रहने लगा था। उसका प्रमाण मेहरगढ़ नाम के स्थान पर है। तो धीरे धीरे उन्नति होते हुए हड़प्पा संस्कृति, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, नागर सभ्यता का उद्भव होता है। और सारे जो प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है इन नदियों के किनारे ही बसे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु के, हड़प्पा रावी के और गवेरी वाला सरस्वती के, कालीबंगा सरस्वती के, बड़ा वाली सरस्वती के, और राखी गढ़ी और तमाम बहुत

0: सारे प्राचीन स्थान विश्वपति के किनारे बसे थे, जिसमें एक प्रमुख हमने बताया अभी जो राखेगढ़ी था विशाल पांच विशाल तक नगरों में। फिर क्या होता है कि 3000 के बाद वो थोड़ा धीरे धीरे ये बारिश का कम होने लगती है। खैर इतनी कम नहीं होती, इन्होंने बहुत इंतजाम किया था हिंदू सभ्यता वालों ने तो ये, लेकिन उसके अंतिम चरणों में 2100 से 1900 के बीच काफी पानी कम हो गया और 1900 ऐसा समय आया जब बिल्कुल बारिश का होना एकदम बंद हो गया। कभी फ्लैश फ्लड्स आते रहे होंगे लेकिन एकदम जिसे कि एरिडिटी एक्सट्रीम एरिडिटी हो गई और उसी समय में ये सरस्वती वृषभवती और ये इसके सहायक नदियां सूखने लगी और वही समय है जब इसके किनारे बसे हुए जब साफ सिंध और इनके सब नदियों के किनारे बसे हुए प्राचीन नगर जो है नगर और महानगर ये उजड़ने लगे। यानी कि आज नागर सभ्यता अब विखंडन हो रहा, लोग शहरों से क्या करते भूथा शहरों में रह के, इसलिए वो गांव की तरफ जत्थे बना के कोई पूरब गया कोई दक्षिण गया कोई उत्तर की तरफ आया, तो इस ढंग से नागर सभ्यता का विघटन हो गया। तो जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है सिंधु सभ्यता के विघटन में। और एक दूसरा कारण जिसके बारे में आजकल विद्वान नहीं बोलते हैं, 2100 के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल उथल पथल हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया और जिसे आजकल इराक कहते हैं, यहाँ भी नगर सभ्यता थी बहुत समृद्ध। वहाँ हड़प्पा वालों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध उनसे था, जो वहाँ पॉलिटिकल उथल पथल भी जिसे 50 से 80 साल तक कहते हैं वो समय है जबकि हमारे व्यापार पर बहुत धक्का लगा। तो हम जो उस व्यापार की वजह से मतलब ये माइनिंग से लेके वस्तु बनाना और लॉजिस्टिक परिवहन वगैरह वगैरह ये सब पे इतना धक्का लगा कि हड़प्पा की ये महानगर का विघटन होने लगा।
1: लेकिन इतिहास की खोज जितनी जरूरी है उसका संरक्षण उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। हजारों वर्षों तक इतिहास को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले टीले, विशेषकर टीला नंबर 4 और टीला नंबर 6, आज आधुनिक अतिक्रमण और निर्माण का सामना कर रहे हैं। विकास और विरासत के संतुलन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक युद्धवीर रावत के विचार।
2: ऐसे जहां भी खुदाई करता है या किसी स्मारक का विकास करता है तो जरूर वहां के स्थानीय लोगों को एक तो ईएसआई की काम करने की पद्धति का पता चलता है और उस ढंग से वो भी कई कामों में निपुण हो जाते हैं और उसमें अपना योगदान करते हैं। जैसे हम लोग वहां पर गई सामग्री वो स्थानीय बनाते हैं, खास करके खुदाई के लिए जो औजार होते हैं उपकरण होते हैं और स्थानीय लोगों को वहां पर ड्राइंग के लिए सर्वेइंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं और उनको सिखाया भी जाता है। साथ साथ उनको जो है विविध जो उपकरण हैं जो इस चीज के जो है साधन हैं उनके बारे में उनको जानकारी होती है, इसलिए उनका योगदान भी इसमें बढ़ जाता है। और खुदाई और अतिक्रमण को रोकने का जहां तक सवाल है, ये धीरे धीरे हम लोगों ने कई टीलों को प्रोटेक्शन किया है, उनकी हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं और कई जो है टीलों पे हम शेड लगा करके एक जीवंत जो है संग्रहालय बना रहे हैं ताकि लोग जान सके कि क्या क्या वहां पर है। तो उसमें भी इन लोगों का योगदान रहेगा और वहां पर जो है भविष्य में कई लोगों को जो है गाइड की और इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों का उसमें बड़ा योगदान हो सकता है।
3: राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख नगर है। इस सभ्यता पर हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित है। राखीगढ़ी में एक बड़ा संग्रहालय और हड़प्पन नॉलेज सेंटर बन रहा है। हरियाणा सरकार के पुरातात्विक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार के अनुसार,
4: राखीगढ़ी के टीलों पर राखी शाहपुर और रोकी खास दो गांव बसे हुए हैं, जहां टीले प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं और वर्तमान गांव हैं आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो हरियाणा सरकार इन टीलों और वर्तमान गांव के माध्यम से हरियाणा की 10,000 साल की जो गौरवशाली यात्रा है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। प्राचीन समय में हरियाणा के लोगों की जीवन शैली ऐसी थी और वर्तमान समय में ऐसी थी और इस यात्रा में क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या बदलाव हुए हैं इसको भी हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। राखीगढ़ी में 200 करोड़ की ज्यादा के लागत से एक विश्व स्तरीय म्यूजियम हरियाणा सरकार

0: कार के माध्यम से बन रहा है और उसमें भी अतीत से वर्तमान की यात्रा है, उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
1: हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार भविष्य में राखी गढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं।
2: स्थानीय युवाओं को हेरिटेज गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना और होम स्टे व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ना ही इस स्थल को जीवंत बनाए रख सकता है। राखी गढ़ी केवल एक खुदाई स्थल नहीं, एक जीवंत गांव भी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जहां किसान अपने खेत जोतते हुए मिट्टी में दबे इतिहास को स्पर्श करते हैं। इस अनूठी सह अस्तित्व की भावना पर राखी गढ़ी के सरपंच दिनेश का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
3: हमारे गांव के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, महिलाएं सबको एक रोजगार के रूप में विकसित गांव धीरे धीरे हो रहा है। हमारे गांव को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में विकसित करने के लिए हम पुरजोर प्रयास करते रहते हैं और एक एक्सपोजर मिलता है कि देश विदेश से घूमे हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनके आइडियाज हम हमारे साथ शेयर करते हैं और उनको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं उन आइडिया को लेके। तो वैसे प्रयास में हमने मतलब एक पूरी बड़ी गाइड टीम को विकसित किया राखी गढ़ी में, ट्रेडिशनल फूड बनाने वाली महिलाओं को विकसित किया है और हमारे जो क्राफ्टमैन है उनका तो कहना ही अलग है। हमारे गांव की कई महिलाओं की दरिया बाहर के कंट्री में बहुत डिमांडिंग है। हमारे गांव की लेडीज जो रोटी बनाने के लिए बोहिया बनाते हैं सरकंडे और पन्नी के, वो बहुत फेमस है। महिलाएं हमारी बाहर के बड़े स्कूल्स में क्राफ्ट वर्कशॉप के लिए जाने लगी है। आगे के प्लान के तौर पे हम हमारे गांव के 200 साल पुराने चौपाल को एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में देख रहे हैं, कुछ हवेलियों को बाहर के लोगों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं।
1: राखी गढ़ी कभी विशाल महानगर रहा होगा, राखी गढ़ी का पूरा रहस्य अभी धरती के गर्भ में ही छिपा है। अभी तो उन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है जो लिपि को पढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। युवा पुरातत्वविद डॉक्टर दिशा आलूवालिया ने समय समय पर हुए उत्खनन कार्यों में भाग लिया है। खुदाई के दौरान उन्होंने करीबन 400 मिट्टी की ईंटें निकाली थी। दिशा आलूवालिया का मानना है कि अभी बहुत काम होना बाकी है।
4: अभी बहुत बड़ा हिस्सा है राखी गढ़ी का जो कि हिंटरलैंड एरिया भी है। हमें नहीं पता है कि सिटी का छोर कहाँ खत्म हो रहा था और उसका सैटेलाइट एरिया कहाँ शुरू हो रहा था। हमें अभी तक जो जानकारी है वो स्टैटिग्राफी और जो कितने सालों तक वहाँ ऑक्यूपेशन रहा है हमें वो पता है, बट कितना और बड़ा सेटलमेंट हो सकता है हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। धोलावीरा के जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है और राखी गढ़ी में जो बड़े बड़े ड्रेन्स मिलते हैं, हमें वेल्स मिलते हैं और जो लास्ट एविडेंस टैंक का मिला था वो ये बताता है कि एक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये मान सकते हैं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे जो लोग को लगे कि बहुत छोटी जानकारी है बट रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। राखी गढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनका सिटी का लिमिट कितना बड़ा था, फोर्टिफिकेशन था नहीं था, बैस्टियंस थे, डबल फोर्टिफिकेशन था, सिंगल फोर्टिफिकेशन था, ये सब जानकारी अभी जानने जरूरी है। बैरियर्स अभी भी एक्सकवेट हो रहे हैं बट उसके अलावा भी हमें ये आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि जो जहां बैरियर्स हो रहे हैं, माउंट सेवन जिसको बोला जाता है, जहां मचो हरपन बैरियर्स मिलते हैं, वहां पे जो अर्ली एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन के, ये दर्शाता है कि जो अर्ली हरप्पन लेवल जो है वो काफी बड़ा रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो साइट पे मिलता है उसका स्केल जानना, वहां से लेके मचौर तक कैसे सेटलमेंट चेंज हुआ है, कैसे सिटी डेवलप हुई है, ये सब बातें जो है, ये कहानी जो है अभी भी बाकी है।
1: उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी इस पुरातात्विक स्थल को और अच्छे से समझा व जाना जाएगा।
4: GPR मैग्नेटोमेट्री ऑलरेडी प्रोफेसर वसंत शिंदे ने किया है बट उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, टेस्ट पिट्स ले सकते हैं, फील्ड वॉकिंग है, कई ऐसी टेक्निक्स है आगे फ्यूचर में आएंगी जो हमें ये एविडेंस बहुत क्लियरली बताएंगी, बट एज ऑफ नाउ अभी हम रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उस पे काफी मेहनत करें और सैटेलाइट इमेजरी और स्पेशल एविडेंस के

0: हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिकेशन लगा सकते हैं साइट के बारे में।
1: राखी गढ़ी की मिट्टी में दबी हर पक्की ईंट एक गाथा सुनाती है, हर मन का एक हुनरमंद हाथ की कहानी कहता है और हर अवशेष उस महान मानव जीवन का साक्ष्य है।
2: सवाल बस इतना है, क्या हम इतिहास की इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं?
3: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना रूपक, राखी गढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख डॉक्टर अप्पू सहारन का था, वाचन स्वर उषा मलिक व पंकज भारद्वाज का था। कार्यक्रम का संपादन दिलीप अहिरवार ने किया, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक के सौजन्य से प्राप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज के प्रसारण में अब हम आपके लिए श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी विल नाउ ब्रिंग यू द कर्नाटक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत।
0: श्री एनआर प्रशांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक हैं, जो संगीत क्षेत्र में अपने अभिनव और शोध आधारित असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री एनआर प्रशांत की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ बेंगलुरु में विद्वान आर के पद्मनाभ के मार्गदर्शन में हुआ। श्री तिट्टे कृष्णयंगार जैसी महान विभूतियों से प्रेरित होकर आपने विदुषी नीला रामगोपाल के सानिध्य में अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। तत्पश्चात प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन जी के आदरणीय मार्गदर्शन में आपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बारीकियों की गहरी समझ प्राप्त की। आपने मैसूर विश्वविद्यालय से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी। आप वर्तमान में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी संगीतमय यात्रा की एक विशेष और अद्वितीय उपलब्धि एक राग संगीत सभाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना है। वर्ष 2001 में आपको सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित एवं नियुक्त किया गया था।
1: श्री एनआर प्रशांत इज ए डिस्टिंग्विश्ड वोकलिस्ट इन कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक रेनाउंड फॉर हिज innovative and research oriented exceptional contributions to the field. Shri N.R. Prashant's musical journey commenced in Bengaluru under the guidance of Vidwan R.K. Padmanabha. Inspired by stalwarts like Shri Tite Krishna Iyengar, he pursued his advanced training under the tutelage of Vidushi Neela Ramgopal. Subsequently, under the revered mentorship of Professor R. Vishweshwaran, he gained a deep understanding of the subtle nuances of Carnatic classical music. He earned a degree in engineering in instrumentation technology from the University of Mysore. He is currently a prestigious A-grade artist of Akashvani. A distinct and unique highlight of his musical journey is the successful presentation of the Ekaraga concert series. In the year 2001, he was invited and appointed as a senior faculty member at the Singapore Indian Fine Arts Society.
0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: In tonight's broadcast, he is accompanied on the violin by CV Shruti, on the mridangam by A Radhesh and on the ghatam by Sharad Kaushik.
0: श्री एनआर प्रशांत अपने कार्यक्रम का आरंभ स्वाति तिरुनाल की रचना से कर रहे हैं नरसिंह मामवा, जो राग आरभी खंड चापताल में निबद्ध हैं।
1: श्री एनआर प्रशांत बिगिन्स हिज कॉन्सर्ट

0: लीजिए अब आप सुनिए मैसूर वासुदेवाचार्य के कृति देवी रमे मानवाब्दी तनये, जो राग वसंत तथा आदिताल में निबद्ध हैं।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य देवी रमे मामवाब्दी तनये इन द राग वसंता सेट टू आदिताल।

0: श्री एनआर प्रशांत अपने गायन को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार की एक रचना परम पावन रामा, जो राग पूर्वी कल्याणी आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल, श्री एनआर प्रशांत विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार परम पावन रामा इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदिताल।

0: ये था तनी आवर्तनम, जिसे मृदंगम पर ए राधेश, घटम पर शरद कौशिक ने प्रस्तुत किया।
1: That was तनी आवर्तनम played on the मृदंगम by ए राधेश and on the घटम by शरद कौशिक।
0: श्री एन आर प्रशांत अपने गायन का समापन रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार की एक तिल्लाना से कर रहे हैं, जो राग पूर्ण चंद्रिका आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: श्री एन आर प्रशांत concludes his vocal recital with a tillana of Ramanathapuram Srinivasa Iyengar in the rag Purnachandrika set to Aditaal.

0: इसके साथ ही रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: विद दैट वी कंक्लूड द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। He was accompanied on the violin by C.V. Shruti, on the mridangam by A. Radhesh.

0: एंड ऑन द घटम बाय शरद कौशिक।
1: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के मैसूर केंद्र पर की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
0: दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी मैसूरु एंड द ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
4: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
3: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस पुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले